0: तारिक हलाल ऑनलाइन ऑर्डर कीजिए ऑन tarikhalal.com और घर बैठे ताजा मीट हासिल कीजिए.
1: दिस इज लाइका रेडियो.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: In the name of Allah, the entirely merciful, the especially merciful.
2: ألف

0: to Leica Gold 2 on Leica Radio mobile app, leicaradio.com and Alexa. Play Leica Gold 2.
1: Ears are great, aren't they? One on each side of your head for stereo. It's because of ears that radio ads can amplify your advertising. 40 million adults listen to commercial radio every week. That's 80 million ears, give or take. See radio differently at radiocentre.org.
2: We'd love to know what you think of your new Leica Radio Greater Manchester. Email us today with your feedback. info@leicaradio.com. That's info@leicaradio.com.
3: ZTV HD पर देखिए एक अनोखी प्यार की दास्तां। मिलिए 46 साल के बिजनेस टाइकून आर्यवर्धन और 19 साल की प्यारी सी अनु से।
4: तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है?
5: खुद से भी ज्यादा।
3: जिन्हें तकदीर चुपके से बांध रही है एक अनजाने रिश्ते में।
5: जो बात मेरे दिल में वही बात आर्य सर के दिल में भी है।
3: क्या ये नजदीकियां बदल देगी उनकी किस्मत की रेखा? देखिए तुमसे तुम तक हर रात 8 बजे ZTV HD पर। अवेलेबल ऑन Sky 707, Sky Glass 714, Virgin Media 809, BT394.
6: LenFi means quicker and safe way to send money.
7: LenFi means low transaction fees and great exchange rates.
6: LenFi means £10 sign-up bonus on registration for transactions over £50. Just use the code LEICA.
7: So send money today to India, Pakistan or Bangladesh with LenFi. Download the LEMFI mobile app today.
8: LenFi is registered by the FCA. T's and C's apply.
0: Punjab, the biggest tunes, non-stop.

इतिहास की किताब पढ़ती है, वो तितलियां साथ रखती है। मेरी दुनिया अपार लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।

0: मैं शब फिराक तो नहीं, लेकिन बारात सुबह फिराक हो चुकी, मंगल की सुबह, रमेश रेशमिया यासिर के नाम मॉर्निंग बज में ताबिश.
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: जी हाँ जी, करेंसी के रेट हमारे यहाँ 1 पाउंड की कीमत US डॉलर में 1.34, 1.34 इंडियन रुपीज में 127.04, पाकिस्तानी रुपीज में 374.23, बांग्लादेशी टका 165.81, श्रीलंकन रुपीज 446.01 और अफगानी रुपीज 84.39.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply. This is the LIKA Radio Network. Across London, Manchester and the Midlands. Holiday breaks are brought to you by Southall Travel.
0: हाँ जी, Southall वालों का पैगाम, कहीं भी यूरोप में अगर आप जाना चाहते हैं साहिल समंदर पर, बीचेस पे, तो अपनी हॉलीडे बुक करा लीजिए Southall वालों से, और जिसमें इंक्लूड हो गए फ्लाइट्स और होटल्स मगर टर्म्स कंडीशन के साथ साथ. नंबर इनका है 0208574 8410. अभी कॉल कीजिए.
1: Holiday breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. This is LIKA Radio News Update.
0: Yeah, और अब मिड मॉर्निंग शो में उर्दू की खास खास हेडलाइंस का वक्त. पाकिस्तान के इलाके अटक में CTD से मुकाबले में 5 दहशतगर्द हलाक हो गए. ईरान ने कहा कि अमेरिका और ईरान जोहरी मुजाकरात दूसरे मरहले में होंगे. ईरान के जोहरी मुआहदे पर CIA को शकूक शुबात हैं. और ईरानी में ईरान अमेरिका मुआहदे के बाद इसराइल से अमेरिकी जहाजों की वापसी के इम्कानात. भारत में दौरान एहतजाज कॉकरोच जनता पार्टी के बानी पर हमला. हनीमून पर तलाक, हनीमून पर खानदान के को साथ लेके जाने वाले दूल्हा दुल्हन से इख्तलाफात के बाद तलाक मांग ली. नॉर्वे में शहजादी के बेटे को जिंसी ज्यादती के दो मुकदमात में कैद की सजा. इंडोनेशिया में जजीरे 16 में 6.7 शिद्दत का खौफनाक जलजला. ईरान अमेरिका जंगबंदी मुआहिदा IMF का बयान सामने आ गया है. अमेरिका में ही 52 यानी 52 तैयारा तबाह होने से 8 अफराद हलाक हो गए, रूसी मीडिया ने कहा. और मस्जिदुल हराम में गलाफ काबा की तब्दीली की पुरवकार तकरीब. सऊदी अरब में आज यकुम मुहर्रमुल हराम है, जबकि पाकिस्तान में चांद नजर नहीं आया. पाकिस्तान में यकुम मुहर्रम कल होगी.
1: The latest gold rate is brought to you by Hearty Hanks, your digital growth partner. This is LIKA Radio.
0: जी हाँ, और अब सोने का भाव हमारे यहाँ UK में 1 ग्राम गोल्ड की कीमत आज है 103 pounds 22 pence यानी 103 pounds 22 pence, जबकि पाकिस्तानी रुपीज में बदस्तूर कल की तरह एक ही रेट 38,500 rupees 24 carat 1 ग्राम.
1: Gold Rate is brought to you by Hearty Hanks, UK premier digital media agency, helping companies expand their digital footprint. Visit heartyhanks.com.
2: LIKA Radio. Yeah.
3: LIKA Radio.
4: Maharaja Tours presents Diwali Dhamaka 2026, 12-night Diwali or Navratri cruise on MSC Virtuosa. Bhajan jamming, Mehfil nights, Ras Garba, Bollywood entertainment or full-on maza. Spain or Portugal ke sunshine ports, full board cruise or Indian khana included. From only £1,179 per person, visit maharajatours.co.uk ya call 07956 154 846.
5: Mum, I'm outside. Yes, literally just landed.
6: Wait. How are you calling already? I'm still searching for Wi-Fi.
5: Oh, I'm on Simzy. Downloaded the eSIM back at Heathrow.
6: And you didn't pay those massive roaming charges?
5: Not a penny extra. Just a cheap local data plan. I even kept my UK number for bank alerts.
7: Heading home for the holidays? Skip the roaming drama. Get instant 5G data in India and 100 plus countries. Download the Simzy app today. Simzy, your global flow. T's and C's apply.
8: Oh,
2: Surinderella is back for 2026. Beck Theatre Hayes, 22nd and 23rd of July. Arts Depot Barnet, 17th and 18th of October. Theatre Royal Stratford East, 20th to the 31st of October. With smash hit music by the hitmaker PBN, Surinderella is guaranteed dizzy panto fun for all the family. And with tickets starting from £15, click riffgotheatre.com and be sure to book before the clock strikes midnight. Surinderella goes back into the Bollywoods. Radio partner, Leica Radio.
3: Need a car the halal way? Look no further. Halal Car Finance is now available in the UK with Ayan. No interest, no hidden fees, no compromise. Apply today at ayan.co.uk. Ayan, drive with Baraka. Subject to status checks. Representative APR 10.9%. This rate reflects Ayan's rental charges. We do not charge interest.
1: Leica Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan.
8: अपने बिजनेस को यूके के लार्जेस्ट एशियन कमर्शियल रेडियो नेटवर्क पर एडवर्टाइज करने के लिए कॉल करें लाइका रेडियो सेल्स ऑन 0161-250-8222 या ईमेल करें sales@laikamedia.co.uk.
1: A Leica Radio Classic plays now.
0: राइट जनाब, वेलकम बैक. एंड प्रोग्राम की शुरुआत में पहला क्लासिक सॉन्ग, और इस सॉन्ग को प्ले करने का कारण ये कि हमारी डायरी के पन्ने पे इस फिल्म के हीरो का नाम लिखा है. क्या नाम है उसका, ये आप मुझे बताएंगे.

0: जी हाँ जी, ये है डिस्को डांसर और ऐसा डांस और ऐसी टांगे चलाने वाला हीरो के मैं क्या बताऊं, आज तक उनकी टांगे ही चलती हैं और फिर वो कहते हैं क्या बात है क्या बात है। जी हाँ जी, मथन चक्रवर्ती की आज बर्थडे है। 16 जून 1950 को कलकत्ता में पैदा हुए थे, बंगाली हीरो। लेकिन क्या बात है, मैं उनका बड़ा दीवाना था, VCR का जमाना था।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: राइट जनाब, SBI वालों का पैगाम, जून का महीना

0: collect mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. We are Leica Radio.
1: Leica Radio.
0: Greater Manchester. Leica Radio.
2: And you Greater Manchester, Greater London, Midland, or kahan bhi, jahan bhi, jahan chahe, jab chahe, aap online hame sun sakte hain, apne laptop pe, apne kaam ki jagah par, ya apne smartphone pe aap hame sun sakte hain, leicaradio.com par. Aur agar koi issue aap se miss ho jaye, to aap listen back pe jaake bhi program sun sakte hain. शुक्रिया अदा करेंगे तमाम साथियों का जो हमारे साथ हैं और जिन्होंने हमारी पहली नहीं थी बल्कि एक ऐसी रैंडम सा सवाल था कि आज हमारी डायरी के पन्ने पे मिथुन जी का नाम लिखा है. अगर आपकी भी पसंद का कोई सॉन्ग हो जो मिथुन चक्रवर्ती पे आपने देखा हो, सुना हो और उससे आपकी यादें जुड़ी हों, तो आप मुझे फरमाइश कर सकते हैं. मैं कोशिश करूंगा कि आपकी फरमाइश पूरा करूं, वरना मेरे पास जो प्लेलिस्ट है उनके गानों की वो वाकई ऐसी है कि आपको फरमाइश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. जून महीने की आज 16 तारीख है और अगर आपके यहाँ कोई इवेंट हो रहा हो मंगल की सुबह, जून का महीना 16 तारीख, आपकी हो सकता है वेडिंग एनिवर्सरी हो या कोई भी खुशी का एक लम्हा, या आपकी डायरी के पन्ने पे आज के दिन क्या लिखा था आज से कई बरस पहले, लेकिन कोई मुझे नहीं बताता, ना बताए कोई बात नहीं, हम तो बूझेंगे. आज का रिडल, आज की पहेली. दावा किया है भेजने वाले ने कि दिमाग घूम जाएगा अगर जवाब दे दिया तो. क्या है भाई वो, क्या है जो अपना काम खत्म होते ही वो क्या है जो अपना काम खत्म होते ही वो खुद टूट जाता है.
1: ये है Leica Radio. Celebrate Father's Day on Sunday, 21st of June in Ambala style. Ambala Sweets has been bringing families together through taste and tradition since 1965. Freshly made, beautifully presented and perfect for the dad who deserves the very best. Classic laddus, habsi halwa or an assorted mithai selection. Make his day extra special with a gift from Ambala. Order online today at ambala.co.uk and celebrate Father's Day in Ambala. Bala style.
3: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
4: Location, location, location.
5: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
4: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
5: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
4: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
5: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
4: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
5: To book, call our London office on 0203963-5757. Greens by Danube. Prime location.
4: High appreciation.
5: In Dubai.
6: CTV and C5 proudly present Hamari Ram, produced by Felicity Theatre. India aur Dubai mein houseful shows ke baad, ab pehli baar London mein. Dekhiye Ashutosh Rana ko as Ravan aur Rahul R. Bhuchar ko Prabhu Shri Ram ke roop mein. Ramayan ki undiscovered stories live on stage. 9 se 12 July, Eventim Apollo, Hammersmith. Hamari Ram.
7: Book your tickets now on eventimapollo.co.uk and use code HamariRam10 for a 10% discount on all shows and tickets.
6: Exclusive radio partner, Like Car Radio.
8: बढ़िया सर्विस से माला माल ट्रेवल और बचत कराने में बेमिसाल ट्रेवल.
9: यू मीन सफ्टोल ट्रेवल?
8: यस, देश विदेश में दूर दूर तक मशहूर.
9: एक बार आजमाइए जरूर सफ्टोल ट्रेवल.
8: सातों दिन किसी भी वक्त फोन मिलाइए और चाहे घर पर टिकट डिलीवर कराइए,
9: फिर दुनिया में कहीं भी घूम कर आइए.
10: कॉल सफ्टोल ट्रेवल 24 आवर्स अ डे 7 डेज अ वीक ऑन 0161 250 1250. दैट्स 0161 250 1250.
11: खाखरा क्रंच, भाखरी मंच, चिक्की स्वीट, पापड़ बीट, पिकल्स हीट, ये है जयमिन फूड्स का वाइब चेक.
12: एड देसी तड़का टू योर रूटीन विद जयमिन फूड के वैरायटी ऑफ स्नैक्स, खाखरा, नमकीन, पापड़, पिकल्स, चिक्की, पॉट मील्स एंड मच मोर.
11: जयमिन फूड्स, देसी क्रेविंग्स, अवेलेबल एट नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स.
0: इवन एट हबीश ऑन लाइका रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर.

बोलो बोलो साजना Like a radio. मैनाज की मधुर आवाज पाकिस्तानी क्लासिक सॉन्ग आपके लिए पेश किया गया और आज भी ऐसे ही क्लासिक सॉन्ग होंगे. आज मंगलवार है और हफ्ते का दूसरा शो हुआ करता है. कुछ नए साथी हमारे साथ आज शामिल हुए हैं. अंजुम ने हमें ज्वाइन किया. अंजुम फ्रॉम स्टॉकपोर्ट. स्टॉकपोर्ट में तो हमारे साथ रोजाना होते हैं जमशेद भाई. चलिए जी, स्टॉकपोर्ट से एक और इजाफा हुआ है जी. आज एक मोहम्मद अवेस ने हमें बड़ी प्यारी सी पिक्चर है चश्मा लगाई है उन्होंने. यंग मैन हमें ज्वाइन किया है और मैनचेस्टर से आप हमें सुन रहे हैं. वेलकम अवेस. और आथरटन से अशरफ साहब ने हमें फरमाइश की है एक सॉन्ग की और वो सॉन्ग यकीनन हम लगाएंगे, लेकिन वो सॉन्ग नहीं बल्कि गजल है नाहिद अख्तर की और हमने उसको निकाल लिया है और क्यू में लगा दिया है अशरफ भाई. लिहाजा फिक्र नॉट, चिंता की कोई बात नहीं. गुलाम अली भाई हमारे साथ हैं जी ब्लैकबर्न में. नवीद अशरफ भाई हमारे साथ हैं. फरीद हुसैन भाई कराची में. ताहिर जावेद नीदरलैंड में. लेला हमारे साथ हैं जी बरी में. और मुझे सोचना पड़ता है और बरी ही में हमारे साथ होती हैं चंदा और साथ साथ साथ में आएंगे वहां पे निगहत और अमन. फरजाना जी हमारे साथ हैं वारिंगटन में. और प्रेस्टन में जाहिद अब्बास भाई, शकील भाई, साजिद असुम्र और खुशबू. रोजडेल में गजाला जबी. और रुखसाना अफजल, अदनान और यासिर के साथ साथ पहली पूछते हैं दोबारा. हमने पूछा था कि वो क्या है जो अपना काम खत्म करते ही टूट जाता है. और अब सतिंदर सरताज पूछते हैं पंजाबी सॉन्ग में. बिल्लो जी जरा हिल्लो जी जरा बोलो जी.

0: रेडियो। आ जरा मुझे थाम ले ए जिंदगी, इंसान वाकई कभी कभी थक जाता है और जिंदगी गुजारने के ढंग को ही भूल जाता है। फिल्म का नाम था पूनम, 1981 की मूवी थी और रफी साहब इसे गा रहे थे और ये हमने फरमाइश पूरी की है। फरमाइश तो नहीं कह सकते लेकिन बहरहाल खालिद भाई, उम्मीद करते हैं कि ये सॉन्ग से आपका कम से कम आज काम हो गया होगा। शुक्रिया जी, बिस्मा हमारे साथ हैं, आज बहुत दिनों के बाद हमें सुन रही हैं और जरीन हमारे साथ हैं मुस्तकिल आश्टन अंडरलाइन में, आश्टनी में हमारे साथ होते हैं काशिफ भाई, ब्लैकपुल में हमारे साथ होते हैं रोजाना नवाज भाई, नवाज चौधरी और अयाज चौधरी भाई। इसके साथ साथ रॉबिन भाई उठ गए हैं न्यूयॉर्क में सुबह ही सुबह। बहरहाल जी गुड मॉर्निंग रॉबिन भाई। उमर आपने हमें मैसेज किया था, अबरार आपने हमें मैसेज किया था, हारिस आपने हमें मैसेज किया था और हमें सुन रहे हैं रिजवान जमन।
1: Leica Radio Network, broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands, with the UK's biggest Asian hits. Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: आज करेंसी के रेट एक बार फिर से आपको बता दूं, हमारे यहां यूके में 1 पाउंड की कीमत आज यूएस डॉलर में 1.34, जबकि पाकिस्तानी रुपीस में 374.23, इंडियन रुपीज 127.04 और बांग्लादेशी टका 165.81, श्रीलंकन रुपीज 446.01 और अफगानी रुपीज 84.39।
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LEICA. Download LemFi now. T's and C's apply. Gold Rate is brought to you by Hearty Hanks, your digital growth partner. This is Leica Radio.
0: हाँ जी, सोने का भाव हमारे यहाँ यूके में आज 1 ग्राम गोल्ड की कीमत हो गई 103.22 यानी कि 103 पाउंड 22 फेनिया और पाकिस्तानी रुपीज में 24 कैरेट 1 ग्राम सोने का भाव आज भी कल की तरह 38,500 रुपए है यानी 38,500 रुपीज।
1: Gold Rate is brought to you by Hearty Hanks, UK premier digital media agency, helping companies expand their digital footprint. Visit heartyhanks.com. Leica Radio. Ye hai Leica Radio. Leica Radio. Ibn Tabish on Leica Radio, Greater Manchester. Leica Radio.
0: हाँ जी, लाइक रेडियो एक्स्ट्रा पे आपको बता दें कि हमारे इस मरतबा पॉडकास्ट को जो है वो होस्ट कर रहे हैं अनुज राधिया और जिस टॉपिक पे वो बात कर रही हैं वो है बॉलीवुड रिवाइंड थ्रू बैक टू 2000।
1: लाइका एक्स्ट्रा इज is Leica Radio.
2: Celebrate Father's Day on Sunday, 21st of June in Ambala style. Ambala Sweets has been bringing families together through taste and tradition since 1965. Freshly made, beautifully presented and perfect for the dad who deserves the very best. Classic laddus, habsi halwa or an assorted mithai selection. Make his day extra special with a gift from Ambala. Order online today at ambala.co.uk and celebrate Father's Day in Ambala style.
3: Surrenderella is back for 2026. Beck Theatre Hayes, 22nd and 23rd of July. Arts Depot Barnet, 17th and 18th of October. Theatre World Stratford East, 20th to the 31st of October. With smash hit music by the hitmaker PBN, Surrenderella is guaranteed dizzy panto fun for all the family. And with tickets starting from £15, click riffgotheatre.com and be sure to book before the clock strikes midnight. Surrenderella goes back into the Bollywoods. Radio partner, Leica Radio.
4: Location, location, location.
5: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
4: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
5: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
4: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
5: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
4: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
5: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Daniel. Prime location,
4: high appreciation
5: in Dubai.
6: Lotto from the National Lottery now gives you two chances to win with every ticket. So it could be you, and it could be you. You, and then the same you, again. You. One ticket, two chances to win. New Lotto. It could be you, and it could be you.
7: See website for Lotto changes. Rules apply. Players must be 18 or over.
1: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. This is the Leica Radio Network. You heard. The Leica Group, consisting of Leica Radio and Leica Gold, is once again the number one Asian commercial group in Greater London. Advertise today across our four stations on 0161 250 8222 or sales@leicamedia.co.uk. A Leica Radio classic plays now.

मिथुन चक्रवर्ती, आज उनकी बर्थडे है। कौन कौन जानता है मिथुन का? 1981 में एक मूवी आई थी, उसका नाम था वारदात, याद है? बप्पी लहरी का म्यूजिक और मिथुन चक्रवर्ती के डांस, और डांस करती हुई झूमती हुई उनकी टांगें,

0: talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
1: हाँ जी, इंडिया और अब पहुंचाने के लिए एक बार फिर से मैं आपके लिए आ गया हूँ यहाँ पे पैगाम देने के लिए कि जून के महीने से पहले पहले इनका पैगाम है. इस जून के महीने के एंड होने से पहले पहले अगर आपको रकम पहुंचानी है तो पहुंचा दे. उसमें फायदा आपको ये होगा कि कम से कम 1,000 पाउंड अगर आप इंडिया अपने प्यारों को पहुंचाते हैं तो आपको 75 पाउंड का वाउचर मिल सकता है. और अगर कम से कम 2,000 पाउंड या इससे ज्यादा की रकम पहुंचाएंगे तो 1 ग्राम आपको एक गोल्ड का सिक्का भी मिल सकता है. मोबाइल ऐप योनो SBI मोबाइल ऐप यूके के जरिए आज के रेट 125 रुपए, तकरीबन कोई 9 पैसे.
0: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. This is Leica Radio.
2: Leica Radio.
0: Greater Manchester. Leica Radio.
1: Yes, Leica Radio, Greater Manchester. Jamshed Chaudhary bhai ne bataya ki Tavish bhai, Khalid Mehmood bhai jo hain, Nelson mein, wo mere bahut acche dost hain. और बहुत खुश हुए आपने रफ़ी साहब का गाना उनके लिए लगाया. हाँ जी बिल्कुल, खालिद भाई कभी कभी फरमाइश करते हैं और जो लोग बहुत कम बहुत कभी कभी फरमाइश करते हैं तो मेरी कोशिश होती है कि मैं उनकी फरमाइश को पूरा कर दूँ. अगर वो सॉन्ग वो ट्रैक मेरे पास मौजूद है तो उसको प्ले करने में मुझे क्या दिक्कत हो सकती है. और जो सॉन्ग इत्तेफाक से उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया था वो मेरे पास था नहीं, तो फिर मैंने ये अपनी पसंद का सॉन्ग लगाया. और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सॉन्ग वाकई मैंने कोई बहुत अरसे के बाद ये सॉन्ग प्ले हुआ हमारे प्रोग्राम में लाइक रेडियो के मंच पर. रिजवान जमट, आपका बहुत शुक्रिया और तमाम साथियों का तहे दिल से एक बार फिर से शुक्रगुजार. पहली हमने ये पूछी थी, दोबारा पूछ लेते हैं आपसे, सभी क्या है. वैसे बड़ी आसान सी आज पहली मैंने पूछी है. फरीद भाई ने कराची से कहा, ताविश भाई इतनी आसान पहेलियां तो मैं रोजाना आपको लिख के भेज सकता हूँ, क्यों नहीं भेजते आप, भेजा कीजिए. तो बताइए वो क्या है, वो क्या है जो अपना काम खत्म होते ही खुद टूट जाता है.
0: The Pakistani Hit of the Hour is brought to you by the Leica Radio mobile app. Listen live and listen back to your favorite shows.
1: और एक बार फिर से मेहनाज है हमारे साथ पाकिस्तानी क्लासिक सॉन्ग में और इस पर तब उनका साथ देंगे ए मैयम. और ये गाना हम नाम करेंगे शमीम बारो में गाने आपके.

0: वेलकम बैक सोनू निगम और श्रीया घोषाल.
1: व्हाट डू यू थिंक?
2: पीयू बोले पिया बोले जानू ना.
0: नॉट बैड.
2: जिया डोले हौले हौले क्यों ये डोले जानू ना.
1: नॉट बैड. अब ये सुनो.

0: सैफ अली खान, मुझे ऐसा लगता है कि शायद उनकी मेरी आवाज एक जैसी है, हो सकता है शायद गलत फहमी हो, लेकिन बहरहाल कोई बात नहीं। राजा अतीक भाई ने हमें लिख के भेजा था बहुत ही दूर अंदेश शेर। जी हाँ, बड़ी दूर की कोड़ी लाते हैं राजा साहब। आपने मुझे लिख के भेजा कि मुमकिन है, हम मुमकिन है कि अब सुकून की जरा सी जगह बने। अरे वाह वाह वाह वाह, मुमकिन है कि अब सुकून की जरा जगह बने और कुछ हसरतों का दिल से सफाया हुआ तो है। भाई बहुत खूब रोबिन भाई, ट्रेन में बैठे हैं, न्यूयॉर्क में हैं, काम पे जा रहे हैं और कहते हैं हमारे अभी फुटबॉल के दीवाने हैं, मैच है, वर्ल्ड कप है, लिहाजा ट्रेन में आज सूना सूनापन है, वरना बहुत बड़ी भीड़ होती है, बहुत रश होता है। राइट राइट राइट, थैंक यू जी, हमारा साथ निभाएंगे। हमारी पहली के जवाब आ रहे हैं और हमने पूछा ये था कि वो क्या है जो अपना काम खत्म होते ही बहुत टूट जाता है। तो इसके जवाब में हमें लिख के भेजा बरी से लेला ने कि शायद ताबिश पटाखे पटाखा। सल्फर से कजूरी जी ने कहा हो सकता है ताबिश आई थिंक मून या सन। अच्छा, अब वही मुझे बेहतर बताएंगे जो लोग मुझे दुरुस्त जवाब दे रहे हैं, इसका जवाब वही लिख के भेजेंगे। हाँ जी, परिणीता का ये सॉन्ग था कजूरी जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा, ताहिर आपने हमें मैसेज किया है नेदरलैंड से और आपने गाने की फरमाइश की है किसी का नाम लेने के लिए कि उसके नाम सॉन्ग कर दें, लेकिन मैं नाम सही प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा, क्या नाम है जरा दोबारा भेजेंगे मुझे।
1: The Pakistani Hit of the Hour is brought to you by the Leica Radio mobile app. Listen live and listen back to your favorite shows.
0: जी, और अब फिल्म का नाम नसीब अपना अपना और यास्मीन आसिफ ने हमें मैसेज भेजा और कई साथियों ने हमें मैसेज भेजा है। नए इस्लामी साल की मुबारकबाद आप लोगों ने दी है और आप लोगों को भी नए इस्लामी साल की मुबारकबाद कबूल हो, खैर मुबारक।

0: रखते, बहुत सारे लोग संभाल के नहीं रखते।
1: पंजाबी हिट ऑफ द आवर विद ताबिश।
0: जी हाँ, अब हरदीप कौर का गाना हमें लेके जा रहा है 12 बजे की खबरों की जानिब। कोई कहीं नहीं जाएगा क्योंकि मैं कहीं नहीं जा रहा।

0: देखा नीरज सुरेंद्र और सचिन जिगर की आवाज में आधा पंजाबी आधा उर्दू सॉन्ग।
1: Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.
0: और अब तीसरा सॉन्ग कुणाल और रिचा शर्मा की आवाज। गुड आफ्टरनून, मंगल की दोपहर, मेरा लंच टाइम और आपका ब्रेकफास्ट टाइम।

0: Mocha Radio. भाई वाह, क्या खूबसूरत गजल थी नाहिद अख्तर की। और सुबह ही सुबह में अशरफ साहब ने आथरटन से आज ही नोट करा दी थी सुबह ही कि आज अगर गजल लगाएं तो ताविश भाई बहुत अरसा हुआ ये गजल मुझे सुननी है नाहिद अख्तर की, तो हमने इसे लाइनअप कर दिया था। तो उम्मीद करते हैं कि आपने इसे सुन लिया होगा, और अगर नहीं सुना तो ये बात फिर दिल्ली तक जाएगी। अच्छा जी, हमारी पहेली के जवाब आ रहे हैं। किसी ने पटाखा लिखा और किसी ने लिखा वादा। ओ हो, वो वादे ही क्या जो वफा हो जाए। बहरहाल अच्छी बात है, थोड़ा सा नरम गरम रहना चाहिए। गजल बहुत अच्छी लगी अतीका जी आपको, तो गजल आपके नाम हो गई, मसला नहीं। और रिजवान ने हमें लिख के भेजा था एक शेर, लगता है रिजवान तुम भी ना हमारे प्रोग्राम सुनते सुनते अब शायर बनते जा रहे हो। है तुमने लिखा कि मैं क्या करूं जब मेरा दिल कुछ और देखना ना चाहे। अरे वाह, मैं क्या करूं जब मेरा दिल कुछ और देखना ना चाहे। और ये दिल का रिश्ता भी अजब है, ये दिल का रिश्ता भी अजब है कि कुछ ना होकर भी वो सब कुछ होता है।
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: हाँ जी, करेंसी के रेट एक बार फिर से आपको बता दें। अमेरिकन डॉलर 1.34 और इंडियन रुपीज में 127.04, पाकिस्तानी रुपीज में 374.23, बांग्लादेशी टका 165.81 का हो गया, श्रीलंकन रुपीज 446.01 और अफगानी रुपीज 84.39 का है आज।
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply. LIKA Radio. Formerly known as Asian Sound Radio. Holiday breaks are brought to you by Southall Travel.
0: Yes, Southall वाले कहते हैं कि दुनिया में खास तौर पे अगर आप यूरोप कंट्रीज में जा रहे हैं कहीं साहिल समुद्र पर हॉलीडेज बुक कराने, तो आपको फ्लाइट्स और होटल्स के लिए बहुत सी मराद देंगे। आप इन्हें कॉल कर सकते हैं, इनका नंबर है 0208-574-8410।
1: Holiday breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. The latest gold rate is brought to you by Hearty Hanks, your digital growth partner. This is LIKA Radio.
0: हाँ जी, सोने का भाव एक बार फिर से आपकी तरफ। 103 पाउंड आज 22 पेनिया हमारे यहाँ रेट है 1 ग्राम गोल्ड की कीमत, 103 पाउंड 32 पेंस, जबकि पाकिस्तानी रुपीस में 24 के रेट 1 ग्राम गोल्ड की कीमत आज है 38,500 रुपए, 38,500 रुपीस।
1: Gold rate is brought to you by Hearty Hanks, UK premier digital media agency, helping companies expand their digital footprint. Visit heartyhanks.com. LIKA Radio. Women's cricket updates presented by Carmel Prabhakar are brought to you by TW Pays. If you're overpaying on your card terminal, we'll show you the truth and cut your costs.
2: And RoboThink, where children don't just use technology, they learn to build it. RoboThink.co.uk/LIKA.
0: राइट जनाब, अब बात कर ली जाए, दुनिया भर में वर्ल्ड कप तो हो रहा है आपको पता है फुटबॉल का, लेकिन क्रिकेट के मामले में खवातीन भी कम नहीं है हमारी खवातीन। और ICC वुमेन वर्ल्ड कप 2020 में आज जो टीमें खेलेंगी उसका मैच तकरीबन कोई 2 घंटे के बाद शुरू होगा, और जो टीमें हैं वो खेलेंगी न्यूजीलैंड वुमेन और श्रीलंका वुमेन।
1: This update was brought to you by TW Pays. Visit twpays.com/LIKA for a chance to win a free card terminal. T's and C's apply.
2: And RoboThink. This summer, give your child a head start in AI, robotics and coding. Places are limited. Save 20% on full week summer camp bookings with code LIKA20 at participating locations. Book now at robothink.co.uk. Terms apply.
0: LIKA Radio. हाँ जी, LIKA Radio गेटर से प्रोग्राम के तीसरे हिस्से का आधा हिस्सा कंप्लीट हुआ, और लाइव रीड आपको पढ़ के सुना रही है। आप जानते हैं रागासन, रागासन LIKA Radio नेटवर्क हैज कंफर्म्ड अ पार्टनरशिप विद द प्रीमियम हॉस्पिटलिटी ब्रांड रागासन। डिटेल एट LIKA Radio.com.
3: ये है LIKA Radio. बढ़िया सर्विस से माला माल ट्रेवल
4: और बचत कराने में बेमिसाल ट्रेवल।
5: यू मीन सफल ट्रेवल?
4: यस, देश विदेश में दूर दूर तक मशहूर।
5: एक बार आजमाइए जरूर साउथ हॉल ट्रेवल।
4: सातों दिन किसी भी वक्त फोन मिलाइए और चाहे घर पर टिकट डिलीवर कराइए,
5: फिर दुनिया में कहीं भी घूम कर आइए।
1: कॉल साउथ हॉल ट्रेवल 24 आवर्स अ डे 7 डेज अ वीक ऑन 0161 250 1250। दैट्स 0161 250 1250। हेरल्ड, न्यू वर्ल्ड ऑफ इको फ्रेंडली डिस्पोजेबल्स फॉर रेस्टोरेंट्स, कैफेज, केटरर्स, फूड टेकअवेज एंड फूड डिलीवरी सर्विसेज। ऑर्डर योर फ्री हेरल्ड कैटलॉग टुडे। कॉल ऑन 0208 507 7900 or download the catalog from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
6: अजी ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा।
7: महाराजा टूर्स ला रहे हैं कैप्टिवेटिंग चाइना 2026, शंघाई, बीजिंग, शान और चेंगडू का अनफॉरगेटेबल सफर, ग्रेट वॉल, टेराकोटा वॉरियर्स, हाई स्पीड ट्रेन्स और एडोरेबल पैंडास, फ्लाइट्स, होटल्स, इंडियन खाना और गाइडेड टूर्स सब इंक्लूडेड फ्रॉम £3,299 पर पर्सन। विजिट maharajatours.co.uk या कॉल 07956154846.
8: Tasty swag and sweet charm. Every spoon feels like a tropical warm. Make puri and amras or milkshake full. Taste itna pure, ho jaye happy soul.
9: Mango season has arrived. Here also with Jaimin's Mango Pulp. No added preservatives or colors. Only purest taste of mangoes.
8: Jaimin Foods Mango Pulp. Available now.
10: The future belongs to creators. At RoboThink Summer Camps, children build robots, learn coding and future-ready skills. Leica listeners get 10% off full week bookings with code LEICA10. Kit package worth over £7,500. Visit book.robothink.co.uk/Leica.
1: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan. Seven stations, one podcast, one mobile app. Advertise on Leica Radio Network, offering the largest Asian radio and digital content in the UK. Call 0161 250 8222 or sales@leicamedia.co.uk. Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Leica Extra. Stream it now and be a part of the conversation.
0: Right, Janab, ab Artist of the Week ki bari. Hamare is hafte ke Artist of the Week hain Shahid Kapoor.

0: Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
1: Right, Janab, ek baar phir se aapko bata dein ki 30 जून से पहले पहले जून के महीने को खत्म होने से पहले पहले इंडिया अपने अजीजों को अपने रिश्तेदारों को रकम पहुंचाने के लिए आप इनकी मोबाइल ऐप का इंतखाब करें और ये कहते हैं कि जून के महीने में अगर आप रकम पहुंचाते हैं तो कम से कम 1000 पाउंड पे आपको दे रहे हैं 75 पाउंड का वाउचर और कम से कम 2000 पाउंड पे दे रहे हैं 1 ग्राम गोल्ड का सिक्का। तो योनो SBI मोबाइल ऐप यूके के जरिए आज का रेट 125 रुपए और तकरीबन कोई 9 पैसे है।
0: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Formerly known as Asian Sound Radio, this is Leica Radio, Greater Manchester. Leica Radio.
1: हाँ जी, लाइक रेडियो गेटर मैनचेस्टर से दोपहर हो गई, मंगल की दोपहर और लंच टाइम हो गया। जाहिद अब्बास भाई ने हमें बिरयानी की ऑफर दी है। अब बिरयानी पता नहीं आप कौन सी खा रहे हैं, लैम की या चिकन की, जरा ये बता देते। वैसे मेरा मूड था आज कीमे की बिरयानी खाने का। हाँ जी, कीमे की बिरयानी, किस किस को आती है कीमे की बिरयानी बनाना, और लास्ट टाइम किसने खाई थी कीमे की बिरयानी। और मुस्तकिल जवाब आ रहे हैं, कुछ लोग कुछ दोस्त बाप हमारे साथ जरा लेट उठे हैं, जैसे आसिम ओल्डम में आज लेट उठे हैं, तो आसिम की गुड मॉर्निंग आज हुई है भाई, वाह, जीते रहो, खुश रहो। अच्छा जी, आज हमारी डायरी के पन्ने पे आज आपको बता दें 16 जून लिखी थी और लिखी है, आज 16 तारीख है और 16 तारीख को नाम लिखा था बॉलीवुड के डांसर हीरो जिनकी टांगे कांपती हैं, आपको पता है। मिथुन चक्रवर्ती की आज बर्थडे हम मना रहे थे और मैंने तो अपने दूर के गाने लगाए, लेकिन बाद में मैंने सोचा कि कुछ दूर आपका भी उनके साथ गुजरा होगा। नेदरलैंड में ताहिर जावेद ने कहा था कि कोई अच्छे से गीत ताबिश नाम कर देना, हमारे पास आई है कौसर, तो कौसर के नाम करते हैं इस गीत को जो फिल्म का नाम है फूल और अंगारे, और 1993 में ये मूवी आई थी, और इस गाने को गा रहे हैं कुमार सानू और साधना सरगम।

को तो दीवाना ही कहा जाता है। कुमार सानू और साधना सरगम, इतने सारे दोस्तों की पसंद का फेवरेट सॉन्ग, अदनान की भी पसंद का और आसिम की भी पसंद का।

0: जवाब दे दे ताबिश की आज की पहेली का। आपने हमारी पहेली का जवाब दिया वादा। कहते हैं सारे ताल्लुक निभा रहे हो, सारे ताल्लुक निभा रहे हो, पागल हो या पागल बना रहे हो। मुझे पागल से उलझते हैं लोग मुझे पागल से उलझते हैं ये सियाने बयाने अहमक लोग। कितने पागल हैं ना हम लोग, कितने पागल हैं ना हम लोग। उन लोगों के पीछे हम खुद को तबाह कर लेते हैं जिनको हमारी परवाह तक नहीं होती। शुक्रिया आसिम और तमाम साथियों का शुक्रिया जिन्होंने हमें खाने की ऑफर दी है। और हमारे प्रोग्राम का बाकी हिस्सा प्रोग्राम के तीसरे हिस्से की ब्रेक के बाद होगा।
1: ये है लाइका रेडियो।
2: Location, location, location.
3: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
2: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
3: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
2: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
3: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
2: And the best part, townhouses and villas, Greens, start from just £711,000.
3: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location.
2: High appreciation.
3: In Dubai.
4: Celebrate Father's Day on Sunday, 21st of June in Ambala style. Ambala Sweets has been bringing families together through taste and tradition since 1965. Freshly made, beautifully presented, and perfect for the dad who deserves the very best. Classic laddus, habsi halwa, or an assorted mithai selection. Make his day extra special with a gift from Ambala. Order online today at ambala.co.uk and celebrate Father's Day in Ambala style.
5: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
6: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
5: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
6: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
5: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
6: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
5: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18+. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA and regulated by the FCMPRA.
7: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फौरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागसन।
8: बढ़िया सर्विस से माला माल ट्रेवल और बचत कराने में बेमिसाल ट्रेवल।
9: यू मीन सफल ट्रेवल?
8: यस, देश विदेश में दूर दूर तक मशहूर।
9: एक बार आजमाइए जरूर सफल ट्रेवल।
8: सातों दिन किसी भी वक्त फोन मिलाइए और चाहे घर पर टिकट डिलीवर कराइए,
9: फिर दुनिया में कहीं भी घूम कर आइए।
10: कॉल सफल ट्रेवल 24 आवर्स अ डे 7 डेज अ वीक ऑन 0161-250-1250। दैट्स 0161-250-1250।
11: थिंक यू माइट बी ओवरपेइंग फॉर कार्ड payments? Most businesses don't realize until they compare. Send your latest statement to TW Pays and get a free comparison quote with the reply within 24 hours. Visit twpays.com/Leica or call 0203-129-9840.
1: A Leica Radio Classic plays now.
0: राइट जनाब, मथन चक्रवर्ती का एक और मशहूर और बड़ा ही प्यारा सा सॉन्ग जो मुझे और आसिम को बहुत पसंद है।

0: हम तो बस इतना जाने कि हमें कल फिर आना है सुबह 10 बजे। इस वादे, इस भरोसे, इस बरहम के साथ कि आप मुझे यकीनन सुनते हैं और कल भी मेरा इंतजार करेंगे। तमाम सुनने वालों का बेहद शुक्रिया। नवाजिश करम, मेहरबानी। मतन चक्रवर्ती का एक और सॉन्ग मैं आपके लिए प्ले करूंगा और ये सॉन्ग लेके जाएगा आपको 1 बजे की खबरों की जानिब। और ये सॉन्ग नाम करेंगे हम रुखसार के। रुखसार में सुन रही है मैनचेस्टर। आज के हमारे सभी गीत उम्मीद करता हूँ अच्छे लगे होंगे आपको, पाकिस्तानी या बॉलीवुड के क्लासिक सॉन्ग और नए और पुराने सॉन्ग मिल मिला के, कुल मिला के आज की पहेली का जवाब। हमने आपसे आज पहेली बड़ी आसान सी पहेली पूछी थी साहब। हमने पूछा था कि वो क्या है, वो क्या है जो अपना काम खत्म होने के बाद खुद ही टूट जाता है। किसी ने लिखा वादा, किसी ने लिखा सूरज, किसी ने लिखा चांद और किसी ने लिखा अंडा। यानी कि एक। हाँ जी, एक। तो जिन लोगों ने हमें जवाब दिया अंडा यानी कि एक, उनका जवाब दुरुस्त हुआ। तो शुक्रिया तमाम साथियों का। और अब दोपहर का वक्त है और कीमे की बिरयानी हमें लैला ने कहा कि मुझे बहुत अच्छी तरह आती है बनाना। हाँ जी, आपको तो और भी बहुत कुछ आता है बनाना। हजरत के साथ तमाम साथियों दोस्तों का बेहद शुक्रिया जो सुबह 10 बजे से मेरे साथ रहे। रॉबर्ट भाई, आप काम पे पहुंच गए होंगे। फरीद भाई, आप भी अब शाम हो गई है, लाइट आ रही है या लोड शेडिंग चल रही है? अफशा और ताबीर दोनों लाहौर से आज गायब है, गैर हाजिर, जबकि जैनब भी मुल्तान में आज गैर हाजिर है। अच्छा जी, मुझे इजाजत। फी अमान अल्लाह, सी यू टुमारो इंशाल्लाह। खुदाए पामान।
1: Ibanez Habish, rolling out your favorite hits across the Northwest. This is Leica Radio.

0: This is Rabina Khan with The Magazine Show. Leica Radio.
1: Magazine Show, आप सुन रहे हैं रुबीना खान के साथ. प्रोग्राम में दो बैक टू बैक सॉन्ग्स आपने अभी सुने. केदारनाथ फिल्म से पहला गीत था जान निसार, और मातृभूमि के फिल्म से दूसरा गीत था श्रेया घोषाल और अरियान की आवाज़ों में. बहुत से अच्छे गीत, और हमारे रेगुलर और जो नॉर्मल फीचर्स हैं प्रोग्राम के, जिसमें खबर पे नज़र भी है और जिसमें एक शॉर्ट स्टोरी भी है, वो सब के सब आज के प्रोग्राम में आपके लिए पेश किए जाएंगे. आप रहिए हमारे साथ. अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं व्हाट्सएप पर, तो हमारा नंबर है 07703403020. इसी नंबर पर आप हमें टेक्स्ट मैसेज सेंड कर सकते हैं. तो लेकर चलती हूँ आपको एक नए अगले गाने की तरफ. नया तो नहीं है, ये 2003 की फिल्म से, एक्चुअली 2003 की फिल्म से है, और गीत बड़ा अच्छा है. आवाज़ें इसमें अलका याग्निक और कुमार सानू की हैं. तो चलिए, देर किस बात की है.
0: The Magazine Show with Rabina Khan.
1: और जी जी उमता गाता ये गाना है फ्रॉम द फिल्म दिल का रिश्ता. और हमारे सभी सुनने वालों के लिए है.

0: सर्विस से मालामाल ट्रेवल और बचत कराने में बेमिसाल ट्रेवल।
1: यू मीन सफल ट्रेवल?
0: यस, देश विदेश में दूर दूर तक मशहूर।
1: एक बार आजमाइए जरूर सफल ट्रेवल।
0: सातों दिन किसी भी वक्त फोन मिलाइए और चाहे घर पर टिकट डिलीवर कराइए,
1: फिर दुनिया में कहीं भी घूम कर आइए।
2: कॉल सफल ट्रेवल 24 hours a day, 7 days a week ऑन 0161-250-1250। दैट्स 0161-250-1250।
3: सेलिब्रेट Father's Day on Sunday, 21st of June in Ambala style. Ambala Sweets has been bringing families together through taste and tradition since 1965. Freshly made, beautifully presented, and perfect for the dad who deserves the very best. Classic laddus, habsi halwa, or an assorted mithai selection. Make his day extra special with a gift from Ambala. Order online today at ambala.co.uk and celebrate Father's Day in Ambala style.
4: Location, location, location.
5: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
4: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
5: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
4: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
5: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
4: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
5: To book, call our London office on 02 03963-5757. Greens by Danube. Prime location,
4: high appreciation
5: in Dubai.
6: Weddings, celebrations, corporate events. At Ragasan, we take care of everything from sourcing the perfect location, designing incredible themes, and creating world-class cuisines and managing every detail through to the finish. With over 30 years of experience, we specialize in delivering truly exceptional class events. Call us on 020-8839-0880 and visit ragasan.com to begin your journey. Ragasan, locate, design, manage, cater.
7: Pepe's Piri Piri is turning up the heat in Bolton, with grills fired up and ready to serve you flame-grilled Piri Piri favourites. Derby Street in Bolton, Pepe's Piri Piri, definitely worth a visit.
8: Chai break ho ya busy work day, sabko chahiye ek perfect cup of chai.
9: Aur ab Royal Chai laaye hain smart solution for your business.
8: Get a Royal Chai vending machine free. Perfect for cafes, restaurants, offices, shops, petrol stations or community spaces.
9: Rich, authentic taste every single time.
8: Royal Chai, brewed for business.
9: Email now, info@royalchaivending.com. Limited offer, terms and conditions apply.
10: जी टीवी HD पर देखिए एक अनोखी प्यार की दास्तां। मिलिए 46 साल के बिजनेस टाइकून आर्यवर्धन और 19 साल की प्यारी सी अनु से।
11: तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं?
12: खुद से भी ज्यादा।
10: जिन्हें तकदीर चुपके से बांध रही है एक अनजाने रिश्ते में।
12: जो बात मेरे दिल में वही बात आर्य सर के दिल में भी है।
10: क्या ये नजदीकियां बदल देगी उनकी किस्मत की रेखा? देखिए तुम से तुम तक हर रात 8 बजे जी टीवी HD पर। अवेलेबल ऑन स्काई 707, स्काई ग्लास 714, वर्जिन मीडिया 809, BT 394।
13: This is Leica Radio, Greater Manchester. Advertise your service here. 0161-250-8222. Leica Radio, Greater Manchester.
14: तारिक हलाल ने इस अजान को स्पॉन्सर करके सदकाए जारिया कमाया है। दुआ है कि इनके इस नेक फेल से इनकी दीन और दुनिया में भलाई हो। विजिट कीजिए तारिक हलाल.com।
15: अल्लाह।

0: तारिक हलाल। नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंग्लैंड में तारिक हलाल फ्रेंचाइज अपॉर्चुनिटी पाने के लिए आज ही राब्ता कीजिए tarikhalal.com।
1: Leica Radio 90s, Leica Radio Punjabi, Leica Gold 2, now available on the Leica Radio mobile app and Alexa.
2: This super hit track is brought to you by Tilda Basmati Rice. With a range of grains and flavors from around the world, you can make every meal memorable.

0: जो गीत आप सुन रहे हैं इसको हमने लिया है फिल्म हमारा दिल आपके पास है, अलका याग्निक कुमार सानू की आवाजें। लाइक रेडियो ग्रेट मैनचेस्टर द मैगजीन शो।
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: करेंसी एक्सचेंज रेट आपको बता दें, आज 1 पाउंड के एक्सचेंज में आपको यूएस डॉलर मिलेंगे 1.34, इंडियन रुपीस मिलेंगे 127.04, पाकिस्तानी 374.23 रुपीस, बांग्लादेशी टका 165.81, श्रीलंकन रुपीस मिलेंगे 446.01, अफगानी मिलेंगे 84.39.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply. This is LIKA Radio, Greater Manchester. Formerly known as Asian Sound Radio. LIKA Radio. A LIKA Radio classic. Plays now.

0: मोहम्मद रफी की आवाज में एक बहुत ही ब्यूटीफुल सॉफ्ट हार्ट टचिंग सॉन्ग आप सुन रहे थे। उम्मीद करते हैं जहाँ कहीं आपने ट्यून इन किया है लाइका रेडियो को और आप सुन रहे हैं, आपको अच्छा लगा होगा। बहुत से मैसेजेस हमारे पास हैं 07-07-03-40-30-20 पर आपके मैसेजेस मिल रहे हैं। अभी एक मैसेज है और उसमें चूंकि एक गाना गेस्ट के नाम करने के लिए कहा है, आई थिंक आपने इससे पहले भी चैताबिश के प्रोग्राम में भी कहा लेकिन आप सुन नहीं पाए, तो ऐसी कोई बात नहीं है, मैं प्ले कर देती हूँ। अगर आपकी गेस्ट ने अपना नाम नहीं सुना है तो आपने सलाम अलैकुम लिखा है, वी हैव गेस्ट फ्रॉम ओरको, हर नेम इज कौसर, कैन यू प्ले अ सॉन्ग फॉर हर, थैंक्स। सो जी यू आर वेरी वेलकम, आपके गेस्ट हैं तो समझिए मैनचेस्टर के गेस्ट हैं। तो नेक्स्ट सॉन्ग जो है वो बहुत प्यारा है, उदित नारायण अलका याग्निक की आवाजें हैं, मैंने दिल तुझको दिया फिल्म का नाम है। सो ये आपकी तरफ से आपके गेस्ट कौसर के नाम होगा क्योंकि आप सुन नहीं सकते, यही गीत फरजाना नसीब आपके नाम। आपने पूछा कैसी हैं आप रुबीना, मैं अच्छी हूँ फरजाना। आप कैसी हैं एसपी सजाद, आपका भी शुक्रिया। तारिक ब्लैकबर्न से आपने भी याद किया है और आपको अच्छा लगा होगा ये गीत जो भी प्ले किया है। जी हाँ, आपने लिखा है व्हाट अ ब्यूटीफुल क्लासिक, यस ऑफ कोर्स, जब आप सुनते हैं आवाज वन एंड ओनली मोहम्मद रफी की बस फिर समा तो बंद ही जाता है और समा भी हम बहुत बांधेंगे, हमारे पास टाइम है 4 बजे तक, मैं आपके साथ हूँ, उम्मीद करते हैं आप भी साथ होंगे। तो मैगजीन शो आप सुन रहे हैं और नेक्स्ट सॉन्ग के दरमियान हाइल नहीं होना चाहती, थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी, लेट्स सी।
1: Star Track of the Hour, sponsored by Star Tours. 28 years of experience, 40,000 passengers every year. Star Tours is trusted for a reason by travelers who appreciate familiar comforts. That's the Star Tours experience. Visit startours.co.uk.

0: is Rabina Khan with The Magazine Show. Laika Radio.
1: लाइका रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर द मैगजीन शो आप सुन रहे हैं और 14 जून को होने वाले आतिफ असलम के कॉन्सर्ट में बहुत से लोग गए होंगे लंदन में रहने वाले और शायद यहाँ से और दूर दूर एरिया से भी लोगों ने ट्रैवल किया होगा और शो को एंजॉय किया होगा लेकिन एक बहुत ज़बरदस्त सा उनका इंटरव्यू जो है वो सामने आया है और उन्होंने कहा है कि कितने बरस पहले की बात है कि लाहौर में एक ऐसा लड़का रहता था जिसके पास जेब खर्च के लिए बहुत ज़्यादा पैसे नहीं होते थे क्योंकि इसके लिए उसके दोस्त बहुत अहम होते थे और आतिफ असलम ने बताया कि लड़कों के लड़के दोस्त जो हैं वो उनके लिए बहुत कुर्बानियां भी देते हैं अपना खाना खिलाते हैं और कॉलेज तक छोड़ते भी हैं लेकिन कौन जानता था कि वो लड़का जो शायद उस वक्त अपने आप को गैर अहम समझता होगा 20 साल के बाद लंदन के O2 अरीना में होगा। वाकई सफ़र ऐसे ही शुरू होते हैं कि इंसान जब पहला कदम उठाता है तो उसको इतनी बड़ी कामयाबी

0: कामयाबी का अंदाजा नहीं होता समटाइम, और जब वो कामयाबी हासिल कर लेता है तब सोच सकते हैं कि दुनिया बदली बदली नजर आती होगी। लेकिन अच्छे लोग जो है वो डाउन टू अर्थ ही रहते हैं और उन लोगों के शुक्रगुजार ही रहते हैं जो हमेशा से उनके साथ रहे हो। सॉन्ग आपको लेकर चलेगा इस वक्त पाकिस्तानी ट्रैक है और रूना लैला की आवाज में उनकी नजरों से जो मोहब्बत का पैगाम मिला। चलिए गीत सुनेंगे, हमारा और आपका साथ है बड़ा जबरदस्त। लाइका रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर पे
1: इज ब्रॉट टू यू बाय द लाइका रेडियो मोबाइल ऐप। लिसन लाइव एंड लिसन बैक टू योर फेवरेट शोज।

0: This is Robina Khan with The Magazine Show. Like a Radio.
1: दो बैक टू बैक सॉन्ग्स अभी आपने सुने हैं, केसरिया। जब आप ये गीत सुनते हैं, केसरिया तेरा रंग है पिया और ब्रह्मिश्रा फिल्म से है ये, तो क्या आपको लगता है केसरिया क्या चीज़ है? क्या ये एक रंग का नाम है? क्या ये एक बहुत कीमती चीज का नाम है? अगर आप ये सोचते हैं तो दोनों बातें सही हैं। केसरी ये कलर को भी कहते हैं, जैसे गोल्डन ऑरेंज नहीं होता, जो गोल्डन कलर होता है ऑब्वियसली वो सोने से रिलेट करते हैं, तो उसको एक एक्सपेंसिव या एक बहुत मीनिंगफुल वर्ड के तौर पे इस्तेमाल होता है ना, ऐसा ही है ना। और चाइना में तो गोल्ड को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, गोल्ड कलर को या येलो कलर को। इसको कहते हैं ताकत की निशानी है, जबकि मुझे याद है अगर आई एम नॉट रॉन्ग कि जो फारसी है उसमें जो पीला रंग होता है ना, येलो कलर, उसको कहते हैं ई रंगे जुदाई अस्त कि ये रंग जुदाई का रंग है। इसीलिए वो जब माइयों और मेहंदी की से पहले जो फंक्शन होते हैं उसमें सब चीज़ों को पीला किया जाता है कि लड़की जा रही है तो रंगे जुदाई है। लेकिन गोल्डन कलर इनफैक्ट जो है ये एक पावर की निशानी होती है। तो केसरिया के नाम से मुझे हमेशा ऐसा फील होता है कि एक लड़की जो बहुत पावरफुल है या जो एक सिम्बॉलिकली बहुत कीमती सभी होती हैं लड़कियां, लड़कों को छोड़े लड़कियां सारी कीमती होती हैं। और दूसरा गीत भी आपने झक मार के सुना, बहुत ही प्यारा गीत है, उम्मीद करते हैं आपने एंजॉय किया होगा। नेक्स्ट सॉन्ग आपको पसंद आए ये भी बहुत मुश्किल है, लिहाजा हमारे साथ रहिए, जुड़े और सुनते रहिए लाइका रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर। सुन रहे हैं आप द मैगजीन शो विद रुबीना खान।
0: Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: आइकॉनिक फिल्म आराधना 1969 के फिल्म से इस गीत को आपने अभी सुना हमारे साथ किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजें. क्या बात है, सुर ही सुर.
1: This is Rabina Khan with the magazine show.
2: खबर पर नजर with Rabina Khan.
0: रेडियो. और अभी जो खबरें आप टॉप ऑफ द आवर में भी सुन रहे हैं या आप वैसे भी अगर न्यूज रीडर हैं या न्यूज पे ध्यान रहता है तो एक मासूम सी खबर जो है उसने हेडलाइंस को अट्रैक्ट किया हुआ है और वो हेडलाइंस बन रही हैं प्रिंस जॉर्ज के बारे में जो कि अब जूनियर स्कूल से हाई स्कूल में जा रहे हैं और एटन कॉलेज में जाएंगे जहाँ पर उसके फादर भी गए थे और उनका जो स्कूल का जो यूनिफॉर्म है यानी हाई स्कूल का वो बहुत ज़बरदस्त है, टेल कोट है और विंग कॉलर है. तो इस यूनिफॉर्म को पहनने की बड़ी तमन्ना लोगों के दिलों में होती है लेकिन ऑब्वियसली जॉर्ज को, प्रिंस जॉर्ज को दाखिला मिल गया है, एडमिशन मिल गया है. इतनी सी बात है, वो कहते हैं ना ये गाना भी है ना इतो सी बात है. तो ये इतो सी बात है लेकिन इम्पॉर्टेंट है और वो बच्चे जो देख रहे होंगे न्यूज़ ऑब्वियसली उनके भी दिल में ख्याल बहुत से आते होंगे लेकिन इट्स नाइस टू हियर दिस. मुझे तो अच्छा लगा इसीलिए इसी खबर पर यूं ही नज़र पड़ी तो मैंने सोचा कि आपको भी बता दें. आप गो के सुन रहे हैं लेकिन अभी जो गीत है वो बहुत दिनों के बाद सुन रहे होंगे. करम नजारा जदो तस्वीर था, ये गीत है पाकिस्तानी क्लासिक.
1: Of the hour is brought to you by the Leica Radio mobile app. Listen live and listen back to your favorite shows.
0: तो कहते हैं ना कि कभी कभी कोई चीज़ ऐसे मशहूर हो जाती है जिस पे आपके बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं होती है. चूड़ियाँ फिल्म के से ये गाना है और इसके बारे में सब जानते हैं. वेरी वेरी लो बजट फिल्म थी, कल जाके गांव में पिक्चराइज कर ली लेकिन क्या ये जैसे कोई गुड्डी आसमान पे चढ़ती है ना, पतंग काइट उस तरह ये आसमान पर चढ़ी. सो इस गीत का बनता है कि हम गीत सुने अभी.

0: This is Leica Radio, Greater Manchester, formerly known as Asian Sound Radio. Leica Radio. The latest gold rate is brought to you by Hearty Hanks, your digital growth partner. This is Leica Radio.
1: Latest gold rate here, 103.22 pounds per gram.
0: Gold Rate is brought to you by Hearty Hanks, UK premier digital media agency, helping companies expand their digital footprint. Visit heartyhanks.com.
2: Leica Radio.
3: Yeah.
4: Leica Radio.
0: The new Asian sound for the Northwest. This is Leica Radio, Greater Manchester.
2: Leica Radio.
0: Extra podcast update.
1: आपको याद दिला दें, लाइका एक्स्ट्रा न्यू पॉडकास्ट का जो टाइटल है वो है बॉलीवुड रिवाइंड अ थ्रोबैक टू 2000s. सो इस पॉडकास्ट को होस्ट किया है अंजू राधिया ने, और इसमें ऑब्वियसली 2000 के बारे में बात है. क्या ये वो डेकेड था जब स्टार्स थे, सॉन्ग्स थे और रोमांस ऑल टुगेदर, ये सब चीज़ें एक साथ में थी. और क्या आपको लगता है कि कैन द सुपर स्टार्स ऑफ 2000 बी रिप्लेस्ड, ये सब चीज़ें जो हैं वो इसमें डिस्कस है. आपका क्या ख्याल है और इस पॉडकास्ट में क्या डिस्कस किया गया है, आप जरूर सुनिए. इसके लिए लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट अवेलेबल है ऑन स्पॉटिफाई, यूट्यूब, अमेजॉन, एप्पल एंड अदर मेजर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स.
0: द मैगजीन शो विद रुबीना खान.
5: सर्विस से माला माल ट्रेवल और बचत कराने में बेमिसाल ट्रेवल.
6: यू मीन सॉफ्ट ऑल ट्रेवल?
5: यस.

हॉलीडे की बात कर रहे थे, साउथ हॉल की बात कर रहे थे, सात समंदर की बात आ गई है बीच में. कोई बड़ी बात नहीं है, सात समंदर पार जाया जा सकता है. सैर करने के लिए या पीछे पीछे किसी के आने के लिए. ब्यूटीफुल ट्रैक है और क्या ही अच्छी आवाज है साधना सैगम की.

0: 1992 का बहुत ही पॉपुलर सॉन्ग विश्वात्मा फिल्म का नाम और साधना सरगम की आवाज़। तो आपको बताया दिव्या भारती, इस सॉन्ग के साथ दिव्या भारती का नाम जुड़ा है। सनी देओल थे स्टारिंग में, गुलशन ग्रोवर। और इस गीत के जो लिरिक्स थे वो आनंद बख्शी ने लिखे थे।
1: Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: India money send करना चाहते हैं तो आज आपको 1 pound के exchange में 127.04 Indian rupees मिलेंगे। So competitive rates के लिए आप money send कर सकते हैं via SBI Yono app or branch before end of June and be in to win a 75 pound voucher daily when you send over 1000 pounds and a 1 gram gold coin every week when sending over 2000 T's and C's apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. The Magazine Show with Robina Khan.
2: Like a radio. Celebrate Father's Day on Sunday, 21st of June in Ambala style. Ambala Sweets has been bringing families together through taste and tradition since 1965. Freshly made, beautifully presented and perfect for their dad who deserves the very best. Classic laddus, habsi halwa or an assorted mithai selection. Make his day extra special with a gift from Ambala. Order online today at ambala.co.uk and celebrate Father's Day in Ambala. Bala style.
3: Maharaja Tours presents Diwali Dhamaka 2026. 12-night Diwali or Navratri cruise on MSC Virtuosa. Bhajan jamming, Mehfil nights, Ras Garba, Bollywood entertainment or full-on maza. Spain or Portugal ke sunshine ports, full boat cruise or Indian khana included. From only £1,179 per person, visit maharajatours.co.uk ya call 07956-154-846.
4: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फॉरन का फोन मिलाए 02088390880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
5: सिंड्रेला इज बैक फॉर 2026. Beck Theatre Hayes, 22nd and 23rd of July. Arts Depot Barnet, 17th and 18th of October. Theatre Royal Stratford East, 20th to the 31st of October. With smash hit music by the hitmaker PBN, Surinderella is guaranteed this see panto fun for all the family. And with tickets starting from £15, click rifcotheatre.com and be sure to book before the clock strikes midnight. Surinderella goes back into the Bollywoods.
6: Radio partner Leica Radio.
7: बढ़िया सर्विस से माला माल ट्रेवल
8: और बचत कराने में बेमिसाल ट्रेवल।
9: यू मीन सबटल ट्रेवल?
8: यस, देश विदेश में दूर दूर तक मशहूर।
9: एक बार आजमाइए जरूर सबटल ट्रेवल।
7: सातों दिन किसी भी वक्त फोन मिलाइए और चाहे घर पर टिकट डिलीवर कराइए,
9: फिर दुनिया में कहीं भी घूम कर आइए।
10: कॉल सबटल ट्रेवल 24 आवर्स अ डे 7 डेज अ वीक ऑन 0161 250 1250. That's 0161 250 1250.
11: Pepe's Piri Piri is turning up the heat in Bolton. With grills fired up and ready to serve you flame-grilled Piri Piri favourites. Derby Street in Bolton. Pepe's Piri Piri. Definitely worth a visit.
1: Leica Radio Network. Broadcasting across Greater Manchester. Robina Khan. Now every Monday to Thursday at 1 p.m. on Leica Radio Greater Manchester.
0: Beautiful track.

दिखे अग्निकर उदित नारायण की आवाजें शिकार फिल्म के लिए, और इससे पहले जो गीत सुना आपने श्रेया घोषाल एंड अर्नब चक्रवर्ती की आवाजें थी फॉर द फिल्म खाकी। वादा रहा जी वो वाला गीत जो पहला गीत था।

0: आप ये गीत शायद लूप पर भी सुन सकते हैं, मैं सुन सकती हूँ, लाल पत्थर फिल्म मोहम्मद रफी की आवाज।
1: This is Rabina Khan with the Magazine Show. Short, heart touching stories with Rabina Khan. Like a radio.
0: प्रोग्राम में वक्त हो रहा है शॉर्ट टचिंग स्टोरी आप तक पहुंचाने का, और आज जो स्टोरी है वो रियली बहुत शॉर्ट है लेकिन बहुत मीनिंगफुल है और बहुत रिलेटेबल है। हम रोजमर्रा की जो जिंदगी है उससे इसको रिलेट कर सकते हैं। तो कहानी कुछ यूं है, और ये कहानी खलील जिब्रान के कुछ लिखे हुए लाइन्स के साथ एक्सट्रैक्ट है। तो कहानी ऐसे है कि एक मैदान में कुछ घास उगी हुई थी, ग्रास जिसको कहते हैं, तो वो अभी बिल्कुल उगी ही थी, यानी अभी जमीन से थोड़ा सा ही ऊपर थी। तो एक दिन वो सुबह सुबह जब वो घास जो है बेदार हुई है, तो उसने देखा कि सूरज की किरणें उस पर पड़ रही हैं और बहुत ही अच्छा सनशाइन है। तो घास ने सोचा कि क्या खूबसूरत दिन है, और सर्दी की धूप तो वैसे ही बहुत मज़ा दे रही है, तो वो बड़ा इंजॉय कर रही थी। इतने में छांव आ गई, अभी उसके दिल में ये ख्याल ही आया था, तो छांव आ गई, फिर धूप आ गई, फिर छांव आ गई, फिर धूप आ गई। इसी तरह ये कुछ देर सिलसिला चला, तो उसने सोचा ये क्या मुसीबत है, ये क्या है इसमें। तो उसने अपनी साथ वाली घास से पूछा कि ये क्या हो रहा है, ये क्यों धूप छांव हो रही है। तो उसने कहा कि तुम्हारे साथ तुम्हारी बगल में जो दरख्त है वो जब हिलता है तो छांव और धूप हमें मिलते हैं। तो उसने नज़र उठाकर देखा तो वो एक ऊंचा दरख्त था। तो उसने कहा है तो ये भी घास ही, लेकिन थोड़ा सा बस ऊंचा हो गया है ये दरख्त। और इससे स्टोरी का मॉरल यह है कि जो छोटे लोग होते हैं, जो छोटी चीज़ें होती हैं, वो दूसरों की बड़ाई उनकी अहमियत को बर्दाश्त नहीं कर पाती, और यही उनकी ईगो होती है। तो इसी ईगो के तहत हम किसी को मानते ही नहीं बड़ा, हम कहते हैं कि सब छोटे हम बड़े।
1: Is brought to you by the Leica Radio mobile app. Listen live and listen back to your favorite shows.

फिल्म का नाम है और रोमियो 2026 की फिल्म और सुखविंदर सिंह और रेखा भारद्वाज की आवाजें और शाहिद कपूर हैं हमारे आर्टिस्ट ऑफ द वीक।

0: Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK Online and via the SBI UK branch.
1: इंडिया मनी सेंड करना चाहते हैं आपको आज एक पाउंड जो है वो 127.04 इंडियन रुपीस देगा. सेंड मनी टू इंडिया वाया एसबीआई योनो ऐप और ब्रांच बिफोर एंड ऑफ जून एंड बी इन टू विन अ 75 पाउंड वाउचर डेली व्हेन यू सेंड ओवर 1000 पाउंड एंड 1 ग्राम गोल्ड कॉइन एवरी वीक व्हेन सेंडिंग ओवर 2000 पाउंड. टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई.
0: India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. The Magazine Show with Robina Khan. Like a
2: radio. Step into the spotlight and get modelling and casting opportunities with
3: Miss, Mrs. and Mr. Asiana 2026.
2: Brought to you by Asiana in association with ZTV and Leica Radio.
3: Get national exposure and take your first step into the world of glamour.
2: The North England Heats will be taking place at the luxurious Park Hall Resort and Spa in Preston, Lancashire.
3: On Sunday, July 5th. Apply now at missasiana.co.uk.
4: Weddings, celebrations, corporate events. At Ragasan, we take care of everything from sourcing the perfect location, designing incredible themes, and creating world-class cuisines and managing every detail through to the finish. With over 30 years of experience, we specialize in delivering truly exceptional class events. Call us on 020 8839 0880 and visit ragasan.com to begin your journey. Ragasan, locate, design, manage, cater.
5: Location, location, location.
6: In real estate, location is everything, and this one is a villa.
5: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
6: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
5: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
6: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
5: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
6: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location.
5: High appreciation.
6: In Dubai.
7: बढ़िया सर्विस से माला माल ट्रेवल और बचत कराने में बेमिसाल ट्रेवल.
8: You mean Subtle Travel?
7: Yes. देश विदेश में दूर दूर तक मशहूर.
8: एक बार आजमाइए जरूर. Subtle Travel.
7: सातों दिन किसी भी वक्त फोन मिलाइए और चाहे घर पर टिकट डिलीवर कराइए.
8: फिर दुनिया में कहीं भी घूम कर आइए.
9: Call Subtle Travel 24 hours a day, 7 days a week. On 0161-250-1250. That's 0161-250-1250.
10: Pepe's Piri Piri is turning up the heat in Bolton. With grills fired up and ready to serve you flame-grilled Piri Piri favourites. Derby Street in Bolton. Pepe's Piri Piri. Definitely worth a visit.
11: बिजनेस के कार्ड पेमेंट चार्जेस देख के कभी सोचा है
12: यार मैं कहीं ज्यादा तो नहीं दे रहा? पता लगाने का एक ही तरीका है, अपना लेटेस्ट स्टेटमेंट TW पेज को भेजिए और 24 आवर्स में पाइए एक फ्री कंपैरिजन कोड. विजिट twpays.com/laika या कॉल कीजिए 0203129 9840. TW पेज, हर ट्रांजैक्शन पर ज्यादा बचत.
0: Bradford Mellor, 1st and 2nd of August. Exclusive radio partner, Leica Radio. Rizkhan, next with Drive.
13: Leica Radio.
0: Leica Radio.

0: तो ये था द मैगजीन शो का सेकंड लास्ट सॉन्ग, और इसके साथ ही मैं इजाजत ले लेती हूँ, और उसके बाद जो सलाम है वो मेरी जगह मोहम्मद रफी की आवाज में आप सुनिएगा, मेरा सलाम ले लो। बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रैक है, मुझे खुद को बहुत पसंद है, और इसीलिए अपने तमाम सुनने वालों का नाम करना चाहती हूँ और आपके लिए प्ले करना चाहती हूँ। आज के प्रोग्राम से इजाजत, इंतजार कीजिएगा जे का, आपसे मेरी मुलाकात कल एक मरतबा फिर होगी, उस वक्त तक के लिए इजाजत, बाय फॉर नाउ।
1: Leica Radio, Greater Manchester. The sister station of Leica Radio and Leica Gold Radio in Greater London.

0: जिंदगी वहाँ सैटको माइक्रोवेव फूड कंटेनर्स.
1: सेलिब्रेट फादर्स डे ऑन संडे 21st ऑफ जून इन अम्बाला स्टाइल. अम्बाला स्वीट्स हैज बीन ब्रिंगिंग फैमिलीज टुगेदर थ्रू टेस्ट एंड ट्रेडिशन सिंस 1965. फ्रेशली मेड, ब्यूटिफुली प्रेजेंटेड एंड परफेक्ट फॉर द डैड हु डिजर्व्स द वेरी बेस्ट. क्लासिक लड्डूज, हब्सी हलवा और एन असॉर्टेड मिठाई सिलेक्शन. मेक हिज डे एक्स्ट्रा स्पेशल विद अ गिफ्ट फ्रॉम अम्बाला. ऑर्डर ऑनलाइन टुडे एट ambala.co.uk एंड सेलिब्रेट फादर्स डे इन अम्बाला स्टाइल.
2: बढ़िया सर्विस से माला माल ट्रेवल और बचत कराने में बेमिसाल ट्रेवल.
3: यू मीन सफल ट्रेवल?
2: यस, देश विदेश में दूर दूर तक मशहूर.
3: एक बार आजमाइए जरूर सफल ट्रेवल.
2: सातों दिन किसी भी वक्त फोन मिलाइए और चाहे घर पर टिकट डिलीवर कराइए,
3: फिर दुनिया में कहीं भी घूम कर आइए.
4: कॉल सफल ट्रेवल 24 आवर्स अ डे 7 डेज अ वीक ऑन 0161 250 1250. दैट्स 0161 250 1250.
5: Need a car the halal way? Look no further. Halal Car Finance is now available in the UK with Ayan. No interest, no hidden fees, no compromise. Apply today at ayan.co.uk. Ayan, drive with Baraka. Subject to status checks. Representative APR 10.9%. This rate reflects Ayan's rental charges. We do not charge interest.
6: Leica Extra Podcast. Be a part of the conversation. Details at leicaradio.com and the Leica Radio mobile app.

झटक आता माझी सटक सटक बम तेरा गुदे खाए कमर पे तेरी बटरफ्लाई बॉडी तेरी मक्खन जैसे खाने में बस तू बटर खाए कम ऑन बेबी टिकट टिकट काटू तेरी टिकट टिकट खेलता नहीं क्रिकेट विकेट पर ले लूं तेरी विकेट विकेट।

0: वाला सा रंग तेरा, बावला सा ढंग तेरा, मुझसे चोरी चोरी बातें करे अंग अंग तेरा। तेरे लिए कुछ भी कर लूंगा, तेरी मैं हर लूंगा कोई भी पीड़ा। पागल हुआ तेरे पीछे जैसे दिमाग में कीड़ा, लगे मीठी जैसे शक्कर शक्कर, आजा चला ले चक्कर चक्कर, बाकी के लौंडे पकड़ पकड़। I am the baddest motherfucker.
1: Yeah. Heartbeat.

0: सेट को फूड कंटेनर्स टोटल सेटिस्फेक्शन।
1: बढ़िया सर्विस से माला माल ट्रेवल
2: और बचत कराने में बेमिसाल ट्रेवल।
3: यू मीन सॉफ्टल ट्रेवल?
2: यस, देश विदेश में दूर दूर तक मशहूर।
3: एक बार आजमाइए जरूर सॉफ्टल ट्रेवल।
4: सातों दिन किसी भी वक्त फोन मिलाइए
2: और चाहे घर पर टिकट डिलीवर कराइए,
3: फिर दुनिया में कहीं भी घूम कर आइए।
5: कॉल सॉफ्टल ट्रेवल 24 आवर्स अ डे 7 डेज अ वीक ऑन 0161 250 1250। दैट्स 0161 250 1250।
6: Planning your wedding? Then you can't miss the Asiana Wedding Show on Sunday, July the 5th at the Park Hall Resort and Spa in Preston, Lancashire.
7: Brought to you by Asiana in association with ZTV and Leica Radio. Discover the top wedding specialists and service providers you need for your dream wedding in one place.
6: Register for free tickets now at asiana.tv/park-hall-show.
7: For stands and sponsorships, call 07803-633-926.
8: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे, सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय।
9: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस।
8: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस।
9: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम।
8: रॉयल चाय, ब्रूड फॉर बिजनेस।
9: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com। लिमिटेड ऑफर, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
10: Lotto from the National Lottery now gives you two chances to win with every ticket. So it could be you, and it could be you. You, and then the same you, again. You. One ticket, two chances to win. New Lotto. It could be you, and it could be you. See website for Lotto changes. Rules apply. Players must be 18 or over.
11: Want magic in every bite? Grab Hera Foods. Superior spices, wholesome dals, chapati flours, oils, sauces, pickles, plus much more. Ingredients sourced from around the world, packed especially for you. Hera Foods, king in quality, king in taste.
12: Hi, this is Akshay Kumar.
13: Hi, this is Akshay Kumar.
12: And you're listening to Leica Radio.

एक रात में हिल्ला मुझसे होने लगी। मैंने बोला एक छोटी सी फाइट है, सुबह ठीक 6 बजे मेरी चंडीगढ़ की फ्लाइट है, स्केड्यूल थोड़ा टाइट है। कहती है आदित्य झूठ बोलने की भी एक हाइट है, कैसे बताऊं लाइफ झूठों से बनी, पीएस के जो घूटों से बनी, मेरी ना किसी इंसान से बनी, बनी तो बस कब्रिस्तान के भूतों से बनी। मैं कभी बहुत ज्यादा सैड, कभी बहुत ही फनी, मेरे गोयाट के बैग कानों में टिफनी, मेरे और जीत के बीच कोई बट इफनी, तीनों की टिप्पणी पे ना करूं टिप्पणी, तेरे जैसे कहां से मैं आंट तो, मैं ऊपर वाले से ब्रह्मांड मांगता फिर, कभी तो कभी ज्ञान बांटता फिर, जो भी चलता है उसकी सरता फिरूं, हिट पे हिट मैं मारता फिरूं, 3 रात लगातार मैं जागता फिरूं, के साथ मेरी बनती है सही, उसे नचाने का शौक है, मैं नाचता फिरूं।

आता था, हमें मचने का शौक था, उसे मचाना आता था। जोड़ी क्या ही खतरनाक थी हमारी, कि हमें नाचने का शौक था, उसे नचाना आता था।

0: बॉलीवुड एंटरटेनमेंट और फुल ऑन मजा, स्पेन और पोर्चुगल के सनशाइन पोर्ट्स, फुल बोर्ड क्रूज और इंडियन खाना इंक्लूडेड फ्रॉम ओनली 1179 pounds पर पर्सन. विजिट maharajatours.co.uk या कॉल 07956154846.
1: बढ़िया सर्विस से माला माल ट्रेवल
2: और बचत कराने में बेमिसाल ट्रेवल.
3: यू मीन सफ्टल ट्रेवल?
2: यस, देश विदेश में दूर दूर तक मशहूर.
3: एक बार आजमाइए जरूर सफ्टल ट्रेवल.
1: सातों दिन किसी भी वक्त फोन मिलाइए
2: और चाहे घर पर टिकट डिलीवर कराइए,
3: फिर दुनिया में कहीं भी घूम कर आइए.
4: कॉल सफ्टल ट्रेवल 24 hours a day 7 days a week on 0161 250 1250. That's 0161 250 1250.
5: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं. परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं. 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए. फौरन का फोन मिलाएं 0208890880 और विजिट ragasan.com. लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन.
6: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे, सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय.
7: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस.
6: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस.
7: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम.
6: रॉयल चाय, ब्रूड फॉर बिजनेस.
7: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com. लिमिटेड ऑफर, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
8: This summer, will your child just use technology or learn to build it? At RoboThink Summer Camps, children create robots, learn coding. Use code LAIKA10 for 10% off full week bookings. Visit book.robothink.co.uk/LAIKA or call 07533065549.
9: Want magic in every bite? Grab Hira Foods. Superior spices, wholesome dals, chapati flours, oils, sauces, pickles, plus much more. Ingredients sourced from around the world, packed especially for you. Hira Foods, king in quality, king in taste.
10: Next, Ashwini, in for Anisa Nasir on The Evening Show on Leica Radio.

0: भाई जिन्होंने अभी अभी ट्यून इन किया है, आप सभी सुन रहे हैं लाइक अ गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइक अ रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर। शो का नाम द इवनिंग शो विद अश्विनी। दो बैक टू बैक गीतों के साथ हमने स्वागत किया इस आवर का। मैं हूं खुश रंगना, लता मंगेशकर की आवाज में यह खूबसूरत गीत आप सबको सुनाया था फिल्म हेना से। एंड सेकेंड वॉज लता मंगेशकर एंड किशोर कुमार की आवाज में तोहफा फिल्म से अलविदा मौसम। बहुत रिफ्रेशिंग लगते हैं ये गाने ना, मुझे ऐसे लगता ना, ऐसे होता ना कि जैसे बहुत गर्मी हो रही है हम जाते हैं और फिर ठंडे पानी से अपना चेहरा धो के आते हैं, लाइक बड़ा फ्रेश लग रहा है यार। तो कुछ कुछ गीत ना ऐसे रिफ्रेशिंग गीत है मेरे लिए। ओके पूछे आप सबसे कैसे हैं आप सब। ट्यूजडे आ गया तो टेरिफिक ट्यूजडे मनाने आप और हम मिल गए यहाँ पे, आ गए साथ में। एंड हमेशा की तरह अटेंडेंस रजिस्टर खुल चुका है, आप लोग अपनी अपनी अपनी अपनी रजिस्टर में जो है अटेंडेंस दर्ज करवा रहे हैं। बिल्कुल आइए, टिक मार्क किए जा रही हूँ मैं जितने हमारे ये सारे के सारे प्यारे प्यारे लिसनर्स आ रहे हैं। एंड ऐसा कैसे होगा कि अश्विनी कोई असाइनमेंट नहीं देगी? चुपचाप आप बैठे बैठे अपना डिनर कैसे करोगे भाई? हाँ फोन तो हाथ में लेके अश्विनी को मैसेज करना पड़ेगा, तो क्या सवाल लेके आई है। ओके मैं आप सबको लेके चलने वाली हूँ आपके अपने बचपन में। अब हमने क्या कर डाला, हाँ ऐसे आया। ओके सो सवाल है आपके एग्जाम्स के दिनों से रिलेटेड। फिलहाल अब ए लेवल्स बच्चों के एग्जाम चल रही है, जीसीएसई एग्जाम्स चल रही है, तो कुल मिला के घर में अगर कोई जीसीएसई वाला है, ए लेवल्स वाला है, इन जनरल स्टूडेंट अगर घर में है तो पढ़ाई का मौसम है क्योंकि एग्जाम का मौसम है। अलबेला मौसम उनके लिए कतई नहीं है भाई। कई बार लग रहा होगा कि क्यों ना उठ के भाग जाए। एक्चुअली विथ मी इट यूज टू हैपन फॉर जस्ट अ कपल ऑफ सब्जेक्ट्स। आई वॉज रियली गुड विद अल्जेब्रा, ज्योमेट्री के साथ में ना मेरी दोस्ती यारी हो ही नहीं पाई, पता नहीं क्यों। ऐसा लगता क्या यार थियोरी लर्न करने है। चलो जहां तक रट्टा मार होता था ना, यस आई एम रियली गुड विथ रट्टा मार थिंग्स। एंड माई फ्रेंड्स यूज टू ऑलवेज से कि तू अ एंड द ये तक नहीं भूलती है यार, कितने मतलब आई जस्ट डोंट नो दैट्स द वे इट वॉज फॉर मी। कि मैं ना अगर मैं कोई चीज लर्न कर लेती थी तो इट यूज टू बी विथ मी, पर मैथ्स में कभी कभी ऐसा हो जाता था। एंड नाउ दैट आई लुक बैक मुझे लगता है कि जो हमारे सर थे आई वॉज मोर स्केयर्ड ऑफ हिम रादर देन मैथ्स, है ना। कई बार ऐसे होता है कि हमें लगता है कि वो सब्जेक्ट जो है वो डरावना है, नहीं कभी कभी वो टीचर्स ऐसे होते। तो कई टीचर्स हमारी ऐसी थी जिनकी वजह से हम उन सब्जेक्ट से भी बहुत प्यार करते थे। सो एनीवेज कमिंग बैक टू मैंने आज क्या टॉपिक छेड़ा, तो दैट टॉपिक इज कि आर यू अ नाइट आउल पढ़ाई करने के मामले में या आप है अर्ली राइजर। विथ मी ऐसा होता था कि रात में 12 बजे के ऊपर, 12:02 भी हो जाए ना तो आई यूज्ड टू बी गुड़ुक, मतलब मैं सो जाती थी। And I used to wake up again by 1:30 AM, 2 AM for पढ़ाई करने के लिए। But 12 के आगे तो मतलब साक्षात देवता आ जाए, ठंडे पानी की फुहार मेरे चेहरे पे लगा दे, ना ना ना आहा, होता ही नहीं था, मेरी आंखें बंद। So tell me, है ना मजेदार सी चीज। चले गए बचपन में, फटाफट अपने फोन उठाइए और मुझे मैसेज कीजिए। वॉल्यूम आप रखना चाहते हैं जरूर रखिए, अमेजिंग से गीत है। This is the evening show with Ashwini.
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: Your £1 in British sterling can get you up to 126.45 Indian rupee. And send money to India via SBI Yono app or branch before end of June and be in to win a £75 voucher every day when you send over £1,000. Also, 1 gram of gold coin every week when you're sending over £2,000. Terms and conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Ye hai Laika Radio.
3: Laika Radio.
4: Are bhang ka rang jama ho chaka chak Hir lo paan chabai
5: Oh,

0: Good Track was brought to you by LaikaRadio.com. We're live across Greater Manchester and online via the Laika Radio app and website on LaikaRadio.com. Listen live or listen back.
1: This is Laika Radio.
2: मिला लेते हैं घड़ियां, देखते हैं टाइम कितना हो रहा है. इट्स नियरली 32 मिनट्स पास्ट 7. 7:30. आप सभी ने ट्यून इन किया है द इवनिंग शो विद अश्विनी ऑन लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर. मैंने आप सबसे सवाल पूछा है कि पढ़ाई के दिनों में आप रात भर जाग कर पढ़ाई कर सकते थे या सुबह जल्दी उठते थे. तो उसके आंसर्स फटाफट सब लोग दे रहे हैं, कह रहे हैं कि कैसे अपने अपने दोस्तों के साथ एक जगह जमघट होता था, चाय के राउंड्स चलते थे और साथ में होती थी खूब सारी मस्ती अलोंग विद पढ़ाई. अपने अपने किस्से कहानियां आप सुना रहे, कह रहे हैं थैंक यू तुम फिर से हमें ले चली अपने स्टूडेंट्स वाले दिनों में. सो अब नेक्स्ट क्या होने वाला है, तो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं अबाउट दिस गुजराती फिल्म. इट्स कॉल्ड जिंदगी वंस मोर. सो लाइका रेडियो नेटवर्क हैज टीम्ड अप एक्सक्लूसिवली विद धर्मा प्रोडक्शंस फॉर द गुजराती फिल्म जिंदगी वंस मोर स्टारिंग सिद्धार्थ रंदेरिया विच रिलीजेज एट सिनेमास दिस वीकेंड. पेयर ऑफ टिकट्स मिलने वाला है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी सिर्फ वही लोग जाएं जिन्हें गुजराती समझ में आती है, बोलते हैं और गुजराती फिल्मों के शौकीन हैं. तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से कि आप जरूर अप्लाई करिए. इसके लिए लिखिए वर्ड जिंदगी जे नॉट जेड, ओके जिंदगी. और ये स्पेशल स्क्रीनिंग होने वाली है थर्सडे 18th of June शाम 6 बजे. एक तो वीकडे है, शाम 6 बजे है. प्लीज अगर आप जा सकते हैं ना, तो किसी और के टिकट्स हम एक्चुअली ब्लॉक तो नहीं कर सकते ना, लेकिन जिंदगी जल्दी जल्दी 2 टिकट्स आपका कर रही है वेट. और ये होने वाला है द कोर्ट हाउस होटल नियर लंदन ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट स्टेशन. और विनर्स को जो है दे कैन कलेक्ट टिकट फ्रॉम द वेन्यू ऑन द नाइट ऑफ द स्क्रीनिंग एंड टिकट्स आप किसी और को नहीं दे सकते. मैंने सारी की सारी डिटेल्स आपको बता दी है. लिखिए और फटाफट अपने नाम भेजिए, जिंदगी लिखिएगा पहले.
0: ये है
1: Laika Radio
0: द इवनिंग शो विद अश्विनी.
2: मैं हूं अश्विनी, हर शाम 7 से 10 बजे तक सुनिए मुझे लाइका गोल्ड रेडियो लंदन एंड ग्रेटर मैनचेस्टर इन द इवनिंग शो विद अश्विनी. फीचर्स बड़े ही इंटरेस्टिंग अमेजिंग आप सभी के लिए.

0: cranking out the biggest hits for the capital. This is Laika.
1: सेकेंड आवर का आगाज हमने किया तो बहुत ही बेहतरीन गीतों के साथ में, घातक पे जो सीरीज 1996, उस फिल्म से अलका याग्निक, शंकर महादेवन एंड अनु मलिक की आवाज में कोई चाहे तो ले आए दिल दिल दिल, है ना दैट ट्रैक। सेकेंड वो पिघलता आसमान से आई जस्ट लव दिस टिंग टिंग टिंग टिंग, अलका याग्निक एंड किशोर कुमार की आवाज में तेरी मेरी प्रेम कहानी। तो सेकेंड आवर आप हम और ये मेलोडियस जर्नी पूरे और एक घंटे के लिए टिल 9 o'clock, उसके बाद में लास्ट आवर हमारा शुरू होगा। सो कैसे चल रहा है डिनर, खा पी लिए? सेकेंड डे ऑफ द वीक जब खत्म होता है तो उत्साह आपका द्विगुणित हो जाता है। एक तो आई लव माय हिंदी, द्विगुणित इज डबल। अच्छा चलो एक नया शब्द आप सीख लो, द्विगुणित यानी कि डबल। ओके सो आप लोग अपनी डिनर प्लेट्स की मुझे फोटोज भेजते हैं तो मैंने सोचा क्यों ना एक महाराष्ट्रीयन रेसिपी, छोटी सी, बहुत ही छोटी सी रेसिपी है, ध्यान से सुनिएगा, मैं आज आपको बता देती हूँ। जितने महाराष्ट्रीयन लोग हैं उन सभी को ये पता है, आप लोग जिसे कहते हैं रायता, ओके, और जो हम फैलाते भी हैं ह्यूमंस इन जनरल वो वाला रायता नहीं भाई, रायते को हम महाराष्ट्रियंस बोलते हैं कोशिंबीर, ओके, KOSHIMBIR, कोशिंबीर। सो कोशिंबीर जो है आप किसी भी वेजिटेबल की बना सकते हैं, जनरली क्यूकम्बर दही में ऐड करके होती है, या फिर हो जाता है कैरेट होता है, या फिर प्याज और टोमेटो की कोशिंबीर होती है, एंड पत्ता गोभी बारीक काट लीजिए उसमें डाल दीजिए नट पाउडर, उसकी कोशिंबीर बन जाती है। और इन सब का बेसिकली जो तड़का है वो है बहुत सिंपल, ठीक है, बेस किसी भी आप वेजीज का ले लीजिए। कोशिंबीर में हम लोग तेल में हींग, जीरा, हल्दी एंड रेड चिली पाउडर, ग्रीन चिलीज डालनी है ग्रीन चिलीज डाल दीजिए। तो आपने अपने रायते में ये तड़का डाल दिया, उसके साथ में आपने डाल दिया हरा धनिया जिसको हम कहते हैं कोथिंबीर, ओके, कोशिंबीर में कोथिंबीर, एंड नमक एंड थोड़ा सा शक्कर, बस मिक्स कर लीजिए। ये अकेली कोशिंबीर आपके लिए बहुत हेल्दी होती है, अगर आपको रोटी नहीं खानी है, मुझे दाल चावल नहीं खाने, कोशिंबीर खा लो आपका पेट भर जाएगा, हेल्दी फ्रेशली मेड कोशिंबीर, ठीक है। तो कोशिंबीर खाइए, खुश रहिए, अश्विनी का शो ट्यून इन करिए, मंडे से फ्राइडे तक होता है शाम 7 से 10 आपका और मेरा साथ, टेरिफिक ट्यूसडे में। कौन सा गीत सुनाऊंगी हैं अभी काय को बताऊंगी मैं थोड़ी देर में सुनाने जो वाली हूँ।
0: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
1: Your £1 in British sterling can get you up to 126 Indian rupees and 45 paise. Send money to India via SBI Yono app or branch before end of June and be in to win a £75 voucher every day when you send over £1,000. Also, 1 gram of gold coin every week when you're sending over £2,000. Terms and conditions apply.
0: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Ye hai
0: Laika Radio.

0: Football Score Updates, brought to you by Rack Law Solicitors, specialists of immigration law, wills and probate, family law, personal injury and other legal requirements.
1: ग्रुप जी में ईरान और न्यूजीलैंड के बीच मैच हुआ, दोनों ने दो दो गोल बनाए, फुल टाइम हो चुका है। ग्रुप आई में फ्रांस और सेनेगल के बीच मैच शुरू हुआ है, 20 मिनट हो चुके हैं, दोनों ने अभी तक एक भी गोल नहीं दागा। इराक और नॉर्वे के बीच मैच होने वाला है 11 बजे। एंड डोंट फॉरगेट टू गेट योर 15 मिनट्स फ्री लीगल एडवाइस विद आवर स्पॉन्सर्स रैक लॉ इफ यू मेंशन लाइका।
0: This update was sponsored by Rack Law Solicitors. Call 0203 345 2000 or visit raklaw.co.uk. Get all the latest travel updates for Manchester at Breakfast and Drive. This is the Leica Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK. Broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands. Tune in wherever you are in the world by downloading the Leica Radio mobile app. Listen live or listen back to your favorite shows. Or log on to leicaradio.com and listen via the website. If you like what you hear, do tell us. Email us info@leicaradio.com. Or you can advertise on the Leica Radio Network by emailing sales@leicamedia.co.uk. This is Ashwini, in for Anisa Nazir, on The Evening Show. Like a
2: radio. बढ़िया सर्विस से माला माल ट्रेवल और बचत कराने में बेमिसाल ट्रेवल।
3: यू मीन सफल ट्रेवल?
2: यस, देश विदेश में दूर दूर तक मशहूर।
3: एक बार आजमाइए जरूर साउथ हॉल ट्रेवल।
2: सातों दिन किसी भी वक्त फोन मिलाइए और चाहे घर पर टिकट डिलीवर कराइए,
3: फिर दुनिया में कहीं भी घूम कर आइए।
4: कॉल साउथ हॉल ट्रेवल 24 hours a day, 7 days a week ऑन 0161 250 1250। दैट्स 0161 250 1250।
5: सेलिब्रेट Father's Day on Sunday, 21st of June in Ambala style. Ambala Sweets has been bringing families together through taste and tradition since 1965. Freshly made, beautifully presented and perfect for the dad who deserves the very best. Classic laddus, habsi halwa or an assorted mithai selection. Make his day extra special with a gift from Ambala. Order online today at ambala.co.uk and celebrate Father's Day in Ambala style.
6: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फौरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
7: लोटो फ्रॉम द नेशनल लॉटरी नाउ गिव्स यू 2 chances to win with every ticket. So it could be you, and it could be you. You, and then the same you, again. You. 1 ticket, 2 chances to win. New Lotto. It could be you, and it could be you. See website for Lotto changes. Rules apply. Players must be 18 or over.
0: This is Leica Radio, Greater Manchester. Broadcasting on 1377 AM and 963 AM. You can also catch us on DAB digital radio across Greater Manchester and East Lancashire. We're also available on Alexa. Simply tell Alexa to play Leica Radio Manchester or download the Leica Radio mobile app.
8: Punjab, the biggest tunes. No.

0: वफा से
1: हाय मर जाऊं।
0: हम भी थे एक नजर के प्यासे,
1: क्यों नहीं
0: दिल पे उसने जो हाथ रखा आ गया आ

0: Feel Good Track was brought to you by LaikaRadio.com. We're live across Greater Manchester and online via the Laika Radio app and website on LaikaRadio.com. Listen live or listen back.
1: This is Laika Radio.
2: मिला लेंगे घड़ियां, देखते हैं टाइम कितना हुआ। इट्स 32 मिनट्स पास 8। आप सभी ने ट्यून इन किया है लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर। शो का नाम द इवनिंग शो विद अश्विनी। थोड़ा मस्ती भरा गीत सुना दिया ना आप सभी को, बुड्ढा मिल गया। इस फिल्म से सुनाया था पिछला गीत हमने आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज में। नेक्स्ट ट्रैक ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल ट्रैक लता मंगेशकर की आवाज में चिराग फिल्म से तेरी आंखों के सिवा।
0: लाइका रेडियो।

0: मिला लेंगे खड़िया, देखते हैं टाइम कितना हुआ है। इट्स 8:50, 16th of June, ट्यूजडे। टेरिफिक ट्यूजडे आपको सुना दिया हमने, और इसमें आवाजें थी लता मंगेशकर और किशोर कुमार की, मर्यादा फिल्म से लिया था हमने। टेरिफिक ट्यूजडे के लिए ये गीत चुपके से दिल दे दे, नहीं तो शोर मच जाएगा। यार दिल मांग रहे हो कि बिल मांग रहे हो? हाँ कुछ कुछ लिरिक्स ना उसका एक्चुअली हम लोग चाहे जैसा अर्थ निकाल लेते हैं, मस्ती मजे में होते हैं तो बिल्कुल मस्ती मजा वाला टाइम भी होता है। गीतों की अपनी एक ताजगी होती है और गीतों का अपना एक एहसास होता है। यही एहसास आप लेते हैं मंडे से फ्राइडे इन दिस इवनिंग शो विद अश्विनी, शाम 7 से 10 बजे तक। इस आवर का आखिरी गीत आपको सुनाने वाली हूँ, इस आवर का आखिरी गीत ना, अभी एक घंटा और है हम लोग साथ में, बिल्कुल यहाँ पे चल रहा है दिस इज द इवनिंग शो विद अश्विनी। लास्ट ट्रैक इज एक मुसाफिर एक हसीना, आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाज में। आप यूं ही अगर मिलते रहे, देखिए आप सबको मुझसे प्यार हो गया ना, सच्ची बताना।
1: Like a Radio 90s, Like a Radio Punjabi, Like a Gold 2, now available on the Like a Radio mobile app and Alexa. This is Ashwini in for Anisa Nazir on the evening show. Like a
2: Radio. कोई भी रिश्ता जब नया होता है ना, एक्साइटिंग होता है क्योंकि वो नया होता है।
3: From friends to lovers to total chaos, the perfect cocktail is back.
4: दोस्ती की कोई वैल्यू नहीं है ना तुझे,
5: उतने अच्छे दोस्त भी नहीं है।
3: Shahid Kapoor, Kriti Senon and Rashmika Mandanna come together in this summer's hottest romantic comedy. Cocktail 2 in cinemas June the 19th.
6: दुल्हन के लिए मेकअप।
3: For cinema listings and local info, visit Bakrania Media on Instagram.
7: बढ़िया सर्विस से माला माल ट्रेवल और बचत कराने में बेमिसाल ट्रेवल।
8: You mean Subtle Travel?
7: Yes, देश विदेश में दूर दूर तक मशहूर।
8: एक बार आजमाइए जरूर Subtle Travel।
7: शायद तो दिन किसी भी वक्त फोन मिला ये।

0: भाई आप लोगों का स्वागत तो मैंने पहले ही कर दिया था, है ना। और दो बैक टू बैक गीत आपको सुनाया, पहला गीत मैंने सुनाया था और प्यार हो गया, विच वॉज रिलीज इन 1997 सोनू निगम की आवाज में। सेकेंड ट्रैक आपको सुनाया था दो प्रेमी, विच वॉज रिलीज इन 1980 मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाज में, मौसम पे जवानी है। सो ऐसा है, कुल मिला के 90s वाले बच्चे खुश हो गए और 80s वाले बच्चे भी खुश हो गए और मैं खुश हो गई क्योंकि कई लेट कमर्स अभी आके अपनी अटेंडेंस दर्ज कर रहे हैं। और मेरे प्यारे प्यारे साइलेंट लिसनर्स जो हैं, हाँ जी भाई साहब, आप बस मुस्कुराओ। दीदी आप ना, हो गया किचन में काम, हो गया ऑफिस से आके ड्राइविंग कर रही थी, चलो कोई ना, लास्ट आवर में जो है आपके एंटरटेनमेंट की पूरी जिम्मेदारी मेरे तरफ। ये गीत मैंने सुना दिया, आप ऐसा है कि आप कहोगे अश्विनी तुम इतनी रात में 9:22 पे जोशे जवानी हाय रे हाय करवाने वाली हो। मुकेश जी की आवाज में अगला गीत आप सभी के लिए।
1: Ashwini, brightening up your weeknights. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: For 1 pound in British sterling, you can get up to 126 Indian rupees and 45 paise. Send money to India via SBI Yono app or branch before end of June and be in to win £75 voucher every day when you send over £1,000. Also, 1 gram of gold coin every week when sending over £2,000. Terms and conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. This is Leica Radio.
2: The Evening Show with Ashwini.

0: Football Score Updates, brought to you by Rack Law Solicitors, specialists of immigration law, wills and probate, family law, personal injury and other legal requirements.
1: ग्रुप जी में ईरान और न्यूजीलैंड के बीच फुल टाइम हो चुका है. दोनों ने दो दो गोल दागे हैं. ग्रुप आई में फ्रांस और सेनेगल के बीच 8 बजे मैच शुरू हुआ. एक भी गोल अभी तक नहीं बना है. 57 मिनट्स हो चुके हैं. इराक और नॉर्वे में जो मैच होने वाला है वो शुरू होगा रात 11 बजे. एंड डोंट फॉरगेट, यू कैन गेट योर 15 मिनट्स फ्री लीगल एडवाइस विद आवर स्पॉन्सर्स रैक लॉ इफ यू मेंशन लाइक.
0: This update was sponsored by Rack Law Solicitors. Call 0203 345 2000 or visit raklaw.co.uk.
1: मिला लेंगे घड़ियां, देखते हैं टाइम कितना हुआ है. तो इट्स नियर, हाँ, 9:22. अब मैं ऐसे क्यों खींच रही थी ऐसे, क्योंकि वो 22 मिनट हुए नहीं थे. सो इट्स 22:09. आप सभी ने ट्यून इन किया है द इवनिंग शो विद अश्विनी ऑन लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर. ओके, तो हमारी गोल्ड नाइट सर्विस है, विच इज ओवरनाइट सर्विस. रात में काम कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ा हो गया, नींद नहीं आ रही, प्लीज गोल्ड नाइट जरूर लगाइएगा. ड्राइविंग कर रहे हैं जरूर लगाइएगा, बहुत प्यारे गीत है. लाइका रेडियो 90s के गीत अगर पसंद करते हैं, 90s वाले आप बच्चे हैं, जरूर पसंद करेंगे. लाइका रेडियो 90s सुनिएगा. लाइका रेडियो पंजाबी, ओए जी बल्ले बल्ले. पंजाबी गीतों के शौकीन है जरूर सुनिएगा. एंड लाइका गोल्ड 2, बॉलीवुड क्लासिक्स नॉन स्टॉप. इतनी सारी चीजें आपके लिए लाइका मीडिया लेके आया है, तो जरूर एंजॉय करिए. और हमारे शो के बारे में आपको क्या लगता है, इसके लिए भी आप हमें मैसेजेस कर सकते हैं. तो गजल या कव्वाली मैं क्या सुनाने वाली, चलो यार मैं ही बता देती हूँ. पहला तो मैं बताने सुनाने वाली हूँ आपको हरिहरन एंड KS चित्रा की आवाज में. कौन सा गीत है भाई? जिद्दी फिल्म से. अगेन 90s वाले बच्चे खुश होंगे, क्योंकि हरिहरन जो है ये हमारे आर्टिस्ट ऑफ द वीक हैं. और उसके बाद में होगी कव्वाली 14वीं का चांद से शमशाद बेगम और आशा भोसले की आवाज में. आप सभी के लिए लाई हूँ ये कव्वाली. दिस इज द इवनिंग शो विद अश्विनी.
0: Get all the latest travel updates for Manchester at Breakfast and Drive. This is the Leica Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK, broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands. Tune in wherever you are in the world by downloading the Leica Radio mobile app. Listen live or listen back to your favorite shows, or log on to leicaradio.com and listen via the website. If you like what you hear, do tell us. Email us info@leicaradio.com, or you can advertise on the Leica Radio Network by emailing sales@leicamedia.co.uk. This is Ashwini in for Anisa Nazir on the evening show. Like a
2: radio. Celebrate Father's Day on Sunday, 21st of June in Ambala style. Ambala Sweets has been bringing families together through taste and tradition since 1965. Freshly made, beautifully presented and perfect for the dad who deserves the very best. Classic laddus, habsi halwa or an assorted mithai selection. Make his day extra special with a gift from Ambala. Order online today at ambala.co.uk and celebrate Father's Day in Ambala. स्टाइल
3: बढ़िया सर्विस से माला माल ट्रेवल और बचत कराने में बेमिसाल ट्रेवल.
4: यू मीन सफल ट्रेवल?
3: यस, देश विदेश में दूर दूर तक मशहूर.
4: एक बार आजमाइए जरूर साउथ हॉल ट्रेवल.
3: सातों दिन किसी भी वक्त फोन मिलाइए और चाहे घर पर टिकट डिलीवर कराइए,
4: फिर दुनिया में कहीं भी घूम कर आइए.
5: कॉल साउथ हॉल ट्रेवल 24 hours a day 7 days a week ऑन 0161 250 1250. दैट्स 0161 250 1250.
6: Weddings, celebrations, corporate events. At Ragasan, we take care of everything from sourcing the perfect location, designing incredible themes, and creating world-class cuisines and managing every detail through to the finish. With over 30 years of experience, we specialize in delivering truly exceptional class events. Call us on 020-8839-0880 and visit ragasan.com to begin your journey. Ragasan, locate, design, manage, cater.
7: Surrenderella is back for 2026. Beck Theatre Hayes, 22nd and 23rd of July. Arts Depot Barnet, 17th and 18th of October. Theatre Royal Stratford East, 20th to the 31st of October. With smash hit music by the hitmaker PBN, Surrenderella is guaranteed dizzy panto fun for all the family. And with tickets starting from £15, click rifcotheatre.com and be sure to book before the clock strikes midnight. Surrenderella goes back into the Bollywoods. Radio partner, Leica Radio.
8: Hayes Piri Piri is turning up the heat in Bolton. With grills fired up and ready to serve you flame-grilled Piri Piri favourites. Derby Street in Bolton. Pepe's Piri Piri. Definitely worth a visit.
9: When you go abroad, everyone knows the best way to make yourself understood is to just say everything in English, but louder.
10: Four beers, please, garçon!
9: If only there was a way that could work with your advertising campaign. Well, there is. And you're listening to it. Because when you amplify your advertising with radio, 40 million listeners every week get the message. See radio differently at radiocentre.org. Have you noticed the way fans shout at football matches?
11: Oh, wake up!
9: That's because conveying your message with sound is the most effective way to communicate to the players on the pitch that they're rubbish. And this works in advertising too. You see, research shows how brands that use radio to amplify their advertising are 49% more likely to get noticed. See radio differently at radiocentre.org.
0: That Leica Gold is the UK's first Asian retro music station. Listen to Bollywood classics 24/7 with live presenters on 10:35 a.m. and DAB in London and on the Leica Radio mobile app. Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Leica Extra. Stream it now and be a part of the conversation.

0: to Manchester. Feel Good Track is brought to you by the Leica Radio mobile app. Download it from iOS and Android devices.
1: This is Leica Radio.
0: Greater Manchester.
1: Leica Radio.
2: अच्छा भाई किशोर कुमार फैंस गेट रेडी फॉर क्रेजी फॉर किशोर अ स्पेशल म्यूजिकल नाइट फीचरिंग जॉय इंद्राणी संजय विथ हेनल एंड 515 बैंड इट टेक्स प्लेस ऑन दिस फ्राइडे 19th ऑफ जून एट द प्रिंस रेजेंट होटल चिगवेल एसेक्स टिकट्स अवेलेबल एट eventbrite.co.uk और कॉल 0208514 5400 एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका गोल्ड रेडियो ओके और अब टाइम हो गया है आप सभी की फेवरेट कव्वाली सेक्शन का

0: Feel Good Track was brought to you by LaikaRadio.com. We're live across Greater Manchester and online via the Laika Radio app and website on LaikaRadio.com. Listen live or listen back.
1: This is Laika Radio.
2: Laika Radio. Laika
3: Radio. आप हो का वीकेंड और भी सुहाना द रितु शर्मा शो में एवरी वीकेंड 10 AM टू 1 PM ऑन Laika Gold Radio, Laika Radio Greater Manchester and Laika Radio Midlands पर.
0: This is Ashwini, in for Anisa Nazir on the evening show.
4: Celebrate Father's Day on Sunday, 21st of June in Ambala style. Ambala Sweets has been bringing families together through taste and tradition since 1965. Freshly made, beautifully presented and perfect for the dad who deserves the very best. Classic laddus, habsi halwa or an assorted mithai selection. Make his day extra special with a gift from Ambala. Order online today at ambala.co.uk and celebrate Father's Day in Ambala style.
5: Mum, I'm outside. Yes, literally just landed.
6: Wait. How are you calling already? I'm still searching for Wi-Fi.
5: Oh, I'm on Simzy. Downloaded the eSIM back at Heathrow.
6: And you didn't pay those massive roaming charges?
5: Not a penny extra. Just a cheap local data plan. I even kept my UK number for bank alerts.
7: Heading home for the holidays? Skip the roaming drama. Get instant 5G data in India and 100 plus countries. Download the Simzy app today. Simzy, your global flow. T's and C's apply.
8: Location, location, location.
9: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
8: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
9: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
8: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
9: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
8: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
9: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Danu. Prime location.
8: High appreciation.
9: In Dubai.
10: Think you might be overpaying for card payments? Most businesses don't realize until they compare. Send your latest statement to TW Pays and get a free comparison quote with the reply within 24 hours. Visit twpays.com/Laika or call 02031299840. The future belongs to creators. At RoboThink Summer Camps, children build robots, learn coding and future-ready skills. Laika listeners get 10% off full week bookings with code LAIKA10. Kit package worth over £7,500. Visit book.robothink.co.uk/Laika.
0: Laika Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.
11: When you notice something wrong, it tends to grow and eventually take over to the point you can't really think of anything else. If something in your body doesn't feel right, the thought it could be cancer can play on your mind. Tests could put your mind at rest. Finding out sooner is always better. Your NHS wants to see you. Contact your GP practice.
12: 40 million people listen to commercial radio each week. That's 80 million ears, give or take. Amplify your advertising at radiocentre.org.
0: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
13: For £1, you'll get 126.79 Indian rupee, 373.53 Pakistani rupee, 449.56 Sri Lankan rupee, 164.85 Bangladeshi taka, 84.80 Afghan Afghani, 173.81 Kenyan shilling and 1.34 US dollars.
1: Laika Radio.
0: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Laika. Download LemFi now. T's and C's apply.
1: Laika Radio.
0: The latest gold rate is brought to you by Hearty Hanks, your digital growth partner. This is Laika Radio.
13: Gold is currently trading at £104 per gram.
0: Gold Rate is brought to you by Hearty Hanks, UK premier digital media agency, helping companies expand their digital footprint. Visit heartyhanks.com.
13: शोले का बैकग्राउंड म्यूजिक आता है, आप सभी समझ जाते हैं ना इस समय तक। तो चलिए मिला लेते हैं घड़ियां, देखते हैं टाइम कितना हुआ है। इट्स 44 मिनट्स पास 9, 44 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जी मैंने आपको बताया कि मुझे 35 के ऊपर की गिनती का थोड़ा इश्यू है, 44 इज राइट, यस आई एम श्योर। तो आप लोगों के बहुत सारे मैसेजेस, बड़े प्यारे प्यारे मैसेजेस आते हैं, और बता दें आपको जिंदगी वंस मोर वाली जो गुजराती मूवी है उसकी विनर है रक्षा किमी पटेल जी, कंग्रेचुलेशंस। और कल भी शायद ही कॉम्पिटिशन रहेगा, तो ध्यान से सुनिएगा जब हम लोग अनाउंस करते हैं कॉम्पिटिशन के बारे में। बिल्कुल, अगर आप गुजराती समझते हैं, आपको गुजराती में इंटरेस्ट है, तो ये फिल्म बड़ी प्यारी फिल्म है, जाके जरूर देखिएगा। इट विल बी ऑन थर्सडे, ओके। एंड हमेशा की तरह बस यही कहूंगी कि जिंदगी बहुत खूबसूरत है यार, इसको कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ, है ना। प्यार दो, प्यार लो, प्यार एक्चुअली काफी है जिंदगी जीने के लिए। एक तो पहली चीज तो हम ही कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं अपनी लाइफ को, और दूसरी चीज पावर तो किसी के लाइफ बर्बाद करने के लिए चाहिए। एंड आई एम श्योर हम सब हैं म्यूजिकल फैमिली, तो आप में से शायद ही कोई अपने पावर का यूज करता होगा। सो आप लोगों के कमेंट्स में जी बिल्कुल फटाफट बोलने वाली अश्विनी इतने प्यारे प्यारे नाम आप लोगों ने मुझे दे रखे ना, कि जब मैं यहाँ से निकलती हूँ रात में, तो आप लोगों के जब मैसेजेस पढ़ती हूँ तो मुझे हंसी आती है, प्लस एक बड़ी प्यारी सी स्माइल आती है ना, मुझे अपनी स्माइल पसंद है। एक्चुअली मैं खुद की बड़ी फैन भी हूँ इसलिए। एनीवेज, लास्ट टू ट्रैक्स मोहम्मद रफी की आवाज में और लता मंगेशकर की आवाज में सुना रही हूँ अगले दो गीत। प्लीज अपना ख्याल रखिएगा, कल हम सबका फेवरेट डे है मिड ऑफ द वीक। आई लव यू ऑल, टेक केयर, गुड नाइट।
14: Like our radio. This super hit song is proudly sponsored by Tilda Basmati Rice. Discover the serious delicious possibilities with Tilda.

0: right away. This is Leica Radio Greater Manchester. Send us your feedback on our programmes and presenters by simply emailing info@leicaradio.com. That's info@leicaradio.com. Leica Radio Greater Manchester is the new name for Asian Sound Radio, giving the northwest of England a refreshing Asian sound.
1: ZTV HD पर देखिए एक नई कहानी.
2: हमारे पति हमको छोड़ दिए.
1: गंगा, जिसने अपने पति का साथ खो दिया.
2: दिल तो टूट किया,
1: मगर अपनी बेटियों के लिए कभी हिम्मत नहीं हारी.
3: एक पत्नी अपनी जिंदगी से हार मान सकती है, लेकिन एक माँ कभी हार नहीं मान सकती.
1: माँ और बेटियों के संघर्ष और उम्मीद की कहानी, गंगा माई की बेटियाँ, हर शाम 7 बजे ZTV HD पर. अवेलेबल ऑन Sky 707, Sky Glass 714, Virgin Media 809, BT 394.
0: Advertise your brand on Leica Radio Greater Manchester and reach out to hundreds of thousands of listeners across the northwest of England. Call 0161 250 8222. That's 0161 250 8222. The biggest Asian love songs across Manchester. The Love Sound. Leica Radio.
4: Come back,